0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.

0: with Radio Musty.
1: जो लिखा गया है वो होकर रहता है और जो नहीं हुआ आप पॉसिबल बना सकते हो। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, थैंक यू सवेरे सवेरे ज्वाइन इन करने के लिए।

इट्स योर चिलैक्स मॉर्निंग विद नमनी और 9 बजे तक हम आपके साथ में होंगे आरएम टू वीडियो मस्ती पर ही। अभी के लिए चिलैक्स वाइब्स को सेटल होने देते हैं लता जी की आवाज में।

0: Tracks with Radio Musty.
1: यस, इन्हीं मधुर गीतों के साथ आपको जगाएंगे मीठे से। आई नो सैटरडे का दिन है, आलस्य तो होता है, लेकिन अगर आप उठ गए हो इसका एक मकसद तो जरूर है, तो एनर्जी को बढ़ाते हैं साथ में। ओसु आपकी मैसेजेस का इंतजार रहेगा 5499-1294 पर, आपकी आरएमजे रेडियो मस्ती पर।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: सफर कैसा रहेगा, चलिए चेक करते हैं कि आज के सितारे आपके लिए कौन सा मैसेज लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं वेदर।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज आपके अंदर उत्साह और आत्मविश्वास बना रहेगा। काम में सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं। गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है और किसी भी निर्णय को सोच विचार कर लेना है। परिवार के साथ समय बिताना सुखदायक रहेगा। लकी कलर आज आपका है रेड और नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज धैर्य और संयम आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें। किसी पुराने मित्र से बात होकर मन प्रसन्न हो सकता है। लकी कलर आपका है हरा और नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज नए विचार और नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखें। छोटी यात्रा का योग भी बन सकता है। लकी कलर आपका है येलो और नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज परिवार और अपनों के साथ आपको खुशी देगा। काम में धैर्य बनाए रखें, सेहत का ध्यान रखें और अधिक तनाव से बचें। लकी कलर आपका है व्हाइट और नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज आपके नेतृत्व गुण सबको प्रभावित करेंगे। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। अहंकार से दूर रहना ही बेहतर रहेगा। लकी कलर आपका है गोल्डन और नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज योजना के अनुसार काम करने से अच्छा परिणाम मिलेगा। किसी अनुभवशाली व्यक्ति की सलाह लाभदायक साबित होगी। सेहत का भी ध्यान रखें। लकी कलर आपका है समुद्री नीला और लकी नंबर है 7।
2: लिब्रा तुला राशि,
1: आज संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक हो सकती है। हर फैसला संतुलन के साथ लें। लकी कलर आपका है पिंक और नंबर है 6।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अधूरे काम पूरे करने का अच्छा समय है। अपनी बातों में विनम्रता बनाए रखें। लकी कलर आपका है मरून और नंबर है 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि,
1: आज सीखने और आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। यात्रा या नए काम की योजना बन सकती है। सकारात्मक सोच बनाए रखें। लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: मेहनत का फल धीरे धीरे मिलता नजर आएगा। आर्थिक मामलों में समझदारी से कदम उठाइए। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद भी लाभदायक रहेगा, तो उनके साथ घुल मिल कर रहिए। लकी कलर आपका है ब्राउन और नंबर है 4।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: आज रचनात्मक सोच आपको अलग पहचान दिला सकती है। दोस्तों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जल्दबाजी से बचें। कोई भी फैसला आप जल्दबाजी में ना लें। लकी कलर आपका है ब्लू और नंबर है 11।
2: पाइसेस मीन राशि,
1: आज आपका मन शांत रहेगा और आध्यात्मिकता की ओर रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ बिताया समय आनंद देगा। अपनी सेहत और आराम का भी ध्यान रखें। लकी कलर आपका है समुद्री हरा और नंबर है 12।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: कटक सीताराम माया मिली न राम। अरे सटक सटक सटक सीताराम।
1: चिलैक्स विद रेडियो मस्ती।
2: जहाज की तरह हमारे कुछ दोस्त भी निकल पड़े हैं इस दिन की जर्नी में। अब है जयशन जी ड्राइव कर रहे हैं इस समय और सुन रहे हैं रेडियो मस्ती। गाना मांग रहे हैं अपने सभी दोस्तों के लिए जयशन तेंबा जीवन ओमिरान अंगोटिया आकाश शर्वन रामदेव और एन मेविन के लिए। एंड वी ऑल्सो हैव अब्दुल जी सायरा बानो जी जो कनेक्टेड हो चुके हैं और विश कर रहे हैं सभी को अ वेरी नाइस डे। एंड गुड लेंस से वी हैव सरिता जी जो गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, वो बोल रही है नाइस सिलेक्शन और विश कर रही है गुड सैटरडे। एंड वी हैव नताशा जी और वो डेडिकेट करना चाहते हैं नेक्स्ट गाना अपनी मम्मी के लिए अनिता चमन के लिए जो कि लालमाची के रहने वाली हैं। एंड आज वो अपना बर्थडे मना रही हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू अनिता जी। बेस्ट विशेस उनके हस्बैंड अजीत की तरफ से बच्चे पूजा प्रतीशा आकाश शैम अवी लियो नायरा एंड नविश की तरफ से। आपके लिए बर्थडे वाला सॉन्ग चलाएंगे जरूर बाद में, अभी के लिए ये नेक्स्ट सॉन्ग आप सभी के नाम।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: सुबह के 6 बजे हैं. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे तीना नमस्कार.
6: नमस्कार. संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें. महंगाई का असर अभी भी मॉरिशस के लोगों के बजट पर.

0: महीना हुआ है। इस साल मार्च से जून के बीच कई जरूरी सामान और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों में सामने आई है। रोटी, घरेलू गैस, बिजली और ईंधन उन चीज़ों में शामिल है जिनकी कीमतों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने मार्च से जून के बीच 14 चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी और केवल 2 चीज़ों की कीमतों में कमी दर्ज की है। कैबिनेट ने मॉरिशस और भारत के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट DTAA में बदलाव के प्रोटोकॉल को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है कि दो बार टैक्स लगने की समस्या को खत्म किया जाए और टैक्स अग्रीमेंट का गलत फायदा न उठाया जा सके। भारत के अधिकारियों के नए स्पष्टीकरण के बाद मॉरिशस ने इस प्रोटोकॉल को मंजूरी देने का फैसला लिया है। बगातेल में नए अमरीकी दूतावास का निर्माण काम 62% पूरा हो चुका है। ये प्रोजेक्ट जिसकी लागत $300 मिलियन यानी लगभग 14 बिलियन रुपये है, दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमेरिका के अफ्रीकन अफेयर्स के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सारा ट्रुटमैन ने इस शुक्रवार को निर्माण स्थल का दौरा किया। और विदेश में ईरान ने जोर्डन में तैनात कई अमरीकी सैन्य विमानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से हमला करने का दावा किया है। ये कार्रवाई ईरान में कई स्थानों पर रात भर हुए अमरीकी हमलों के जवाब में की गई है, जिनमें कम से कम 8 लोगों की जान चली गई है। और अंत में मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन दोपहर बाद के समय देश के उत्तरी इलाकों, पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी और रात्रि के समय भी उत्तरी इलाकों और पूर्वी इलाकों में हल्की वर्षा होगी और बाद में दक्षिणी इलाकों, पश्चिमी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर भी बारिश होगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 30 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा हल्की एवं सामान्य रहेगी और जो दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी। सूर्योदय आज 7:45 और सूर्यास्त शाम के 5:47 पर। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त है। मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Chillax, chillax, chillax with Radio Masti,
3: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: गुड मॉर्निंग चिलैक्स मॉर्निंग में फिर से स्वागत है आपका। अगर आप ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं या फिर वीकेंड की प्लानिंग चल रही है तो टेंशन को थोड़ा साइड में रखें, क्योंकि अगले कुछ घंटों तक दिन भर आपके लिए मस्ती और पॉजिटिव वाइब्स होंगे फुली पैक्ड। तो चलिए मॉर्निंग को आगे बढ़ाते हैं अनदर जबरदस्त गाने के साथ। चले जैसे हवाएं, कैसी चल रही है हवाएं ये तो आप हमें मैसेजेस पर बताना जरूर है 5499-1294 पर।
2: Radio Masti, sunte raho.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: इट्स योर चिलैक्स शो, आपके मॉर्निंग को मैजिकल बनाने के लिए ऐसे ही खूबसूरत गाने लाते रहेंगे एंड 6:30 आप सुन पाएंगे पूरा समाचार। अभी के लिए गानों को एंजॉय करते हैं, वाइब को एंजॉय करते हैं, आरएमजी वीडियो मस्ती पर ही।
1: With Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की प्रमुख खबरें। मॉरिशस में महंगाई का असर जारी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार मार्च से जून के बीच रोटी, घरेलू गैस, बिजली और ईंधन जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कैबिनेट ने मॉरिशस और भारत के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में संशोधन के प्रोटोकॉल को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य टैक्स एग्रीमेंट के गलत इस्तेमाल को रोकना और दो बाल टैक्स लगने की समस्या को दूर करना है। बागाचेल में नए अमरीकी दूतावास का निर्माण कार्य 62% पूरा हो चुका है। लगभग 14 बिलियन रुपये की लागत वाला ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। विदेश में ईरान ने जोर्डन में तैनात अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। इसके बाद मध्यपूर्व में तनाव और बढ़ गया है। और अब समाचार विस्तार से। महंगाई का असर अभी भी मॉरिशस के लोगों के बजट पर बना हुआ है। इस साल मार्च से जून के बीच कई ज़रूरी सामान और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों में सामने आई है। रोटी, घरेलू गैस, बिजली और ईंधन उन चीज़ों में शामिल है जिनकी कीमतों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने मार्च से जून के बीच 14 चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी और केवल दो चीज़ों की कीमतों में कमी दर्ज की है। इससे साफ है कि रोज़मर्रा की ज़रूरी खर्च अब भी मॉरिशस के परिवारों के बजट पर भारी पड़ रही है। ज़्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: मार्च और जून 2026 के बीच ये नोट किया गया कि जिंदगी की महंगाई बढ़ती गई। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 109.6 अंकों से बढ़कर 112.2 अंकों तक पहुंचा, जो 3 महीनों में 2.4% की वृद्धि है। ये बढ़ोतरी कई पैदावारों की कीमतों में वृद्धि की वजह से है। रोटी का दाम 43% से बढ़ गया है। घरेलू गैस की कीमत में 26.4% की वृद्धि, डीजल 18.2% से बढ़ा है। बिजली टैरिफ में 14.4% की बढ़ोतरी आई है। घरेलू तेल की कीमत में 13.6% का इजाफा हुआ है और पेट्रोल का दाम 10% से बढ़ा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए एयर टिकट भी बढ़ गई है। सिगरेट, हाउसिंग लोन्स की सूद दर में भी इजाफा हुआ। जहां तक खर्चों की बात है, आवास, पानी, बिजली, गैस और दूसरी जरूरियात परिवहन के मुकाबले काफी महंगी हो गई हैं। लेकिन कुछ ऐसी पैदावारें हैं जो इस वृद्धि से प्रभावित नहीं हैं। जैसी सब्जियों के दामों में 4.5% की गिरावट आई है और निजी टीवी चैनल फीस भी 10.1% से घटे हैं। कुल मिलाकर स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने 14 दाम वृद्धियों का उल्लेख किया और 2 गिरावटों का नोट लिया, जबकि खर्चे मॉरिशन पैदावारों के बजट में बढ़ते जा रहे हैं।
0: कैबिनेट ने मॉरिशस और भारत के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA में बदलाव के प्रोटोकॉल को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है कि दो बार टैक्स लगने की समस्या को खत्म किया जाए और टैक्स एग्रीमेंट का गलत फायदा न उठाया जा सके। भारत के अधिकारियों के नए स्पष्टीकरण के बाद मॉरिशस ने इस प्रोटोकॉल को मंजूरी देने का फैसला लिया है। और कैबिनेट ने क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉपअप टैक्स के नए नियम 2026 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉपअप टैक्स को 2025 में ग्लोबल एंटी बेस इरोजन नियम के तहत शुरू किया गया था, ताकि मॉरिशस के टैक्स बेस को सुरक्षित रखा जा सके। नए नियमों के जरिए क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉपअप टैक्स फ्रेमवर्क को सही तरीके से लागू करने के लिए ज़रूरी जानकारी दी गई है। इसमें इफेक्टिव टैक्स रेट को गणना का तरीका, टॉपअप टैक्स लगाने की प्रक्रिया और उन व्यक्तियों या संस्थाओं की जानकारी शामिल है जो इस डोमेस्टिक मिनिमम टॉपअप टैक्स के दायरे से बाहर होंगे। बगाचल में नए अमरीकी दूतावास का निर्माण काम 62% पूरा हो चुका है। ये परियोजना जिसकी लागत लगभग 14 बिलियन रुपये है, दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमरीका की अफ्रीकन अफेयर्स के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट

0: सारा ट्रोटमैन ने इस शुक्रवार को निर्माण स्थल का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कंक्रीट डालने के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया।
1: दौरे की शुरुआत परियोजना की जानकारी से हुई। निर्माण स्थल के जिम्मेदार और युवा मॉरिशन इंजीनियरों ने नई दूतावास

0: सुरक्षा, टिकाऊ निर्माण और पर्यावरण संबंधी कड़े मानकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है।
1: La nouvelle ambassade américaine, nous peut construire lui pour qu'il y dure pendant prochaines 100 ans qui peut venir. Donc en termes matériaux qui peut mettre.
0: नई इमारत का निर्माण इस तरीके से किया जा रहा है ताकि उसका ढांचा 100 सालों तक मजबूत रहे। निर्माण सामग्री, फिनिशिंग सभी कुछ उच्च किस्म की है और टिकाऊ भी।
2: Nous avons une exposition internationale avec plusieurs employés qui sont sortis depuis plusieurs pays. Donc c'est vraiment un échange de connaissances.
0: अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों के साथ हमने अनुभव साझा किया और नई विशेषज्ञता हासिल की।
3: On a beaucoup mangé leurs panneaux qui sont installés devant les rooftops, qui pour offset le bois de consommation de 20%. Et aussi, ce générateur qui nous est équipé avec une sound atténuateuse qui pour réduire le sound level.
0: इमारत की छत पर सोलर पैनल्स बिठाए गए हैं, इससे बिजली की बचत होगी। आधुनिक जनरेटर भी है, लीकेज को रोकने के लिए मजबूत ढांचे भी हैं। ये इमारत अन्य इमारतों से अलग है। अब तक परियोजना का 62% काम पूरा हो चुका है। निर्माण स्थल पर 20 देशों के करीब 550 कर्मचारी काम कर रहे हैं। मुख्य ढांचे का निर्माण पूरा हो गया है। अब काम अंदरूनी निर्माण और तकनीकी सुविधाएं लगाने के चरण में पहुंच गया है। ये नया दूतावास सिर्फ एक इमारत नहीं, ये मॉरिशस और अमेरिका के बीच मजबूत होते संबंधों का भी प्रतीक है। दोनों देश पहले से कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। सारा ट्रॉटमन ने बताया, मेरे दौरे का मकसद है मॉरिशस और अमेरिका के बीच कारोबार बढ़ाना। ये यात्रा इस दिशा में सफल हुई है। मॉरिशस की कंपनियां अमेरिकी साझेदारी के लिए तैयार हैं।
4: Ce bâtiment là, le projet qui peut réaliser par l'Amérique, cette ambassade, qui pour un an une vision de plus de 100 ans. Ça, il démontrer que nos relations avec l'Amérique, les stables et les sustainable. Donc, un symbole de confiance.
0: गणराज्य के राष्ट्रपति धरम गोकुल ने बताया, अमेरिकी दूतावास के इस नए भवन को 100 वर्ष के विजन के साथ खड़ा किया जा रहा है। इस पहल से मॉरिशस और अमेरिका के बीच मौजूद मजबूत और स्थिर संबंध झलकते हैं। ये इमारत विश्वास का प्रतीक है। परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर एक अमेरिकी है, उन्होंने इस बात की प्रशंसा की है कि हमारे युवा इंजीनियर बहुत काबिल है। इस दूतावास के जनवरी 2028 में खुलने की उम्मीद है। इसके होने से मॉरिशस और वॉशिंगटन के बीच कूटनीतिक सहयोग को नई मजबूती मिलेगी, साथ ही दोनों देशों की साझेदारी भी और प्रगाढ़ होगी।
5: विवरण आस्था गोविंद चितामन का रहा। मॉरिशस के लिए इस हफ्ते प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट से देश के सामने खड़ी कई चुनौतियों पर बहस शुरू हो गई है। इनमें सार्वजनिक कर्ज, पेंशन सुधार और वृद्धि की संभावनाएं शामिल हैं। आईएमएफ की सिफारिशों को बेहतर तरीके से समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पुराने उच्चाधिकारी डॉ. विमल ठाकुर ने स्पष्टीकरण दिए। सार्वजनिक वित्त, पेंशन सुधार और मौसम परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर महारत हासिल इस विशेषज्ञ ने हमारे सहयोगी शेजा जुमन से बात की, उनको सुनते हैं।
6: आईएमएफ ने मॉरिशस की इकोनॉमी पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है और इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है जब से ये रिपोर्ट आम की गई है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त इन टिप्पणियों पर गौर किया जाता है?
7: Al Rahal Maurice, avril, mai. Mission wa milan gouvernement, c'est secteur privé, c'est ban ori NGOs log sangé, ori l'université qui lecturer sangé. Sab ko ise milan ja, taki ou log ke jab rapport wa li kian sata, sab information rahi. सब कोई के पॉइंट ऑफ व्यू सब कब से डाले उनमें।
6: आईएमएफ ने मॉरिशस में जब फिस्कल कंसोलिडेशन का अच्छा स्वागत किया है, दूसरी तरफ कई सुधारों की सिफारिश भी की है जिनमें पेंशन सुधार भी शामिल है और इस पर अभी ज्यादा टिप्पणी हो रही है।
7: दूगो चीज यहाँ रहा कि फिस्कल कंसोलिडेशन डेट और हमने के देश के डेट ढेर उगमते होगा रहा और ये अभी जो जेफो होल बा हाउ डेटवा के पैसे होता मोटे हो के हमने के ये भी देखे के चाहला कि हमने के देश में बुढ़ापा उगमते हुआ था। हमने के है के प्रिपारे करे के चाहला और प्रिपारे कैसे करब सा हमने के चाहला कि ला संते के सिस्टम हमने के बुरहान लोग के

0: लोग के स्वाड़े कैसे के चाहेला हमने के ये भी चाहेला कि हमने के बड़ा लोग जो हवन सा उ लोग के सकब सा सोसाइटी में इकोनॉमी में क्रिया करे जब उ लोग भी पार्टिसिपे हो जन सा जब बूढ़ा हुआ था सा पेंशन है में एगो एक पार्टी है सोल्यूशन वाके है जो रिफॉर्म करता अभी है रिफॉर्म वा असुरे करी कि सब सकब सा पेंशन वा दे के आने वाले सालों में मॉरिस लाफ्रिक से डिफरेंट है हमने के पॉपुलेशन व्यय हुआ था लाफ्रिक के पॉपुलेशन अभी जनबा मैं जब देख बा जब एगो पेई जब जैसे बोला जापान जैसे बुल्गारी बा हाउ देश वन में भी व्ययिस्मा बहुत जल्दी से एक्सेलेरे हुआ था पॉपुलेशन भी रिड्यूस हुआ था और उन देशों में भी रिफॉर्म करत वन सा पेंशन के जमे हाउ सिस्टम वा सकी पेये करे आने वाले सालों में
1: 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और अपार्टाइड के खिलाफ संघर्ष के विश्व प्रतीक नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इतिहासकार डॉक्टर सत्येंद्र प्रियतम के अनुसार नेल्सन मंडेला केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे बल्कि वे उपनिवेशवाद अत्याचार और नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक थे। उनके संघर्ष ने दुनिया के कई लोगों को प्रेरित किया है जिसमें मॉरिशस भी शामिल है। मॉरिशस में उनके विचारों ने सर शिवसागर राम गुलाम को भी 1950 और 1960 के दशक में आज़ादी की लड़ाई के दौरान प्रेरित किया। इतिहासकार के अनुसार नेल्सन मंडेला की विरासत आज भी युवाओं को अपने अधिकारों की रक्षा करने और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की प्रेरणा देती है। इतिहासकार डॉक्टर सत्येंद्र प्रियतम के बयान पर सुमेरा अकबर अली को सुनते हैं।
2: Dans ses écrits, des trois fois, il mentionne Maurice. Dans Long Walk to Freedom, dans ce livre, il mentionne Maurice des trois fois.
3: Nelson Mandela ne a apni tehreeron mein kai jagahon par Mauritius ka zikr kiya. Unhone upniveshan ke khilaf Mauritius ke sangharsh par baat ki. Sir Shivsagar Ram Gulam 1970 aur 1980 ke saalon mein Free Mandela movement ka samarthan karte the. Angrezon ke khilaf aur Mauritius ki azadi ke liye Mauritius ko Nelson Mandela ki ANC se prerna mili thi. African National कांग्रेस की देखा देखी दक्षिण अफ्रीका में 1940 के जमानों से नेल्सन मंडेला ने भेदभाव का विरोध किया था। नेल्सन मंडेला की गिरफ्तारी भी स्वतंत्रता संघर्ष में एक प्रतीक है। उन्होंने अनेक नौजवानों को प्रेरणा दी है और अभी तक दे रहे
2: हैं।
1: विदेश में ईरानी जोर्डन में तैनात कई अमरीकी सैन्य विमानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से हमला करने का दावा किया है। ये कार्रवाई ईरान में कई स्थानों पर रात भर हुए अमरीकी हमलों के जवाब में की गई है जिनमें कम से कम 8 लोगों की जान गई है। और ये घटना जोर्डन की सेना के उस बयान के कुछ ही घंटों बाद हुई जिसमें कहा गया था कि उसने 3 ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। हालांकि जोर्डन ने किसी हताहत या नुकसान की सूचना नहीं दी है। और अमेरिका के पूर्वी हिस्से में स्थित ग्रेट लेक से लेकर राजधानी वाशिंगटन डीसी तक 15 राज्यों के लोग लगातार तीसरे दिन मौसम की भयानक मार झेलने को विवश है। लगातार तीसरे दिन जंगलों में भयानक आग लगी हुई है। शुक्रवार को 68 जगहों पर आग के मामले दर्ज किए गए। लाखों अमरीकी नागरिकों के सामने गंभीर स्वास्थ्य संकट छा गया है और उन्हें घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। अमरीका के पूर्वी इलाके में जहां हर तरफ धुआं धुआं है वहीं दक्षिणी हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। देश विदेश की खबरों के बारे में अब मौसम का हाल सुनते हैं। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह देश भर में मौसम सुहाना रहेगा लेकिन दोपहर बाद के समय देश के उत्तरी इलाकों पूर्वी इलाकों और संचार बातों पर बादल घिरे रहेंगे। रह रहकर वर्षा भी होगी और रात्र के समय उत्तरी इलाकों और पश्चिमी इलाकों पर हल्की वर्षा होगी और बाद में दक्षिणी इलाकों पश्चिमी इलाकों और सेंट्रल बातों पर भी रह रहकर वर्षा हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25

डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा हल्की एवं सामान्य रहेगी, जो दक्षिण पश्चिम की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी। सूर्योदय आज 7:45 हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 5:47 पर होगा।

0: मौसम संबंधी जानकारियों के बारे में आज की प्रमुख खबरों को दोहराती है। मॉरिशस में महंगाई का असर जारी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार मार्च से जून के बीच रोटी, घरेलू गैस, बिजली और ईंधन जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कैबिनेट ने मॉरिशस और भारत के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में संशोधन के प्रोटोकॉल को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य टैक्स एग्रीमेंट के गलत इस्तेमाल को रोकना और दो बार टैक्स लगने की समस्या को दूर करना है। बगाचल में नए अमरीकी दूतावास का निर्माण कार्य 62% पूरा हो चुका है। लगभग 14 बिलियन रुपये की लागत वाला ये प्रोजेक्ट December 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। विदेश में ईरान ने जोर्डन में तैनात अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। इसके बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। तो इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजान का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: NBC Radio.TV
0: नंबर 45 रिलीज क्यूपिप में, नंबर 45 रिलीज क्यूपिप में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड के श्री मारोती रागू, श्री मारोती रागू जो मारोत नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो एक प्राथमिक स्कूल के पूर्व इंस्पेक्टर थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे श्री बिपिन रागू के घर नंबर 45 रिलीज क्यू पेपर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। मोंसेलमेंट सुहावन बेलेर रिवियर सेश में, मोंसेलमेंट सुहावन बेलेर रिवियर सेश में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री बिद्यानंद किशुन चेती, श्री बिद्यानंद किशुन चेती जो देवानंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनकी पत्नी श्रीमती चंद्रावती किशुन चेती के घर मोंसेलमेंट सुहावन बेलेर रिवियर सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। Avenue Palma 4 Bonnemais, Avenue Palma 4 Bonnemais, qui a 6 salles, qui est 81 years old, qui est Shimati Logamani Chang Have Hardwar, Shimati Logamani Chang Have Hardwar, Paidashinam Nick Fok Chow, Paidashinam Nick Fok Chow, और जो लीना थाडवा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके पति श्री केशरी सिंह आनंद थाडवा के घर जीवनारायण एवेन्यू पालमा कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। जिलबेर Jocelyn Street, quand le vieux Okulémé, Gilbert Jocelyn Street, quand le vieux Okulémé, on a 6 salles, qui est 79 years old, qui est chez Mounousami Marie Moutou, chez Mounousami Marie Moutou, जो मामी गाँव सुनाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके घर Gilbert Jocelyn Street, quand le vieux Okulé se uthakar antim sanskar ke liye bigara ki shmashan bhumi le jaye jayegi. Cremation today at 2:30 PM. Telephone number 1

वाकुआमी टेलीफोन नंबर एक वाकुआमी 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती गौरी भगवान, श्रीमती गौरी भगवान जो पैदाइशी नाम जीता, पैदाइशी नाम जीता और जो श्रीमती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री राजन भगवान के घर क्लेफो नंबर एक वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। सिवेन चिनयन रोड गुडलैंड्स में, सिवेन चिनयन रोड गुडलैंड्स में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की कुमारी फुलमत मुकुन, कुमारी फुलमत मुकुन जो बिदवंती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के 10:30 बजे उनके घर सिवन चिनियन रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बाहोश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। रॉय रोड रोशटिया में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड के श्री चुनुलाल होदन, जो रामदत्त नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती ज्ञानती होदन के घर रॉयल रोड होस्टिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खोंगुप की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। नंबर 289 एवेन्यू ओलिए कैथ्रोबोन में, अठावन साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री अमृत पाबू जो अजीत नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके भाई श्री साजन पाबू के घर नंबर 289 एवेन्यू ओलिए कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: कदम कदम पर आपके साथ ही चलेंगे 24/7 यू आर एम टू रेडियो मस्तीज विद यू. तो चिलैक्स शो जारी है, मिलते हैं नेक्स्ट आवर में एक बार फिर रवि के लिए. इस गाने को एंजॉय करते हैं साथ में.
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: And yes, a chillax morning continues with Nalmani. अभी के लिए गेम है जो आपको दिला सकता है एक टिकट टू द गोल्डन 90s एरा टूर फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य जो कि वर्थ है 850 रुपीज। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, आपको बताना है कि अभिजीत भट्टाचार्य का जन्मदिन कब है। वन इज द सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य's बर्थडे। 5499-1294 पर अपने जवाब दीजिए। गुड लक टू यू।
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट
3: टक टक बॉलीवुड।

0: कलवा अलवा अलोवा कलवा
1: तू है अलवा कलवा अलवा अलोवा कलवा
0: तू है हलवा हलवा हलवा हलवा हलवा।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: चलिए लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट्स सुनते हैं विकास जी से. गुड मॉर्निंग.
4: गुड मॉर्निंग नीलमणि, एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस. कुछ दिनों के आराम के बाद बैक टू बिजनेस. फीफा वर्ल्ड कप 2026 की अंतिम घड़ी आखिर में आ ही गई. कल संडे को होगा इसका महाफाइनल. विश्व फुटबॉल के दो दिग्गज फुटबॉल राष्ट्रों के बीच, यानी अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन या मौजूदा वर्ल्ड कप चैंपियन वर्सेस यूरोपियन चैंपियन. अर्जेंटीना में द गोट लियोनेल मेसी है, तो स्पेन में कमाल का यमाल, और इन दोनों की कहानी भी अद्भुत है जिसे हम कल ही सुनाएंगे. सो कल रात 11 बजे न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी मेटलाइफ स्टेडियम में स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना. इसलिए 19 जुलाई की रात सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि फुटबॉल के इतिहास का वो सुनहरा अध्याय होगी जब मेटलाइफ स्टेडियम में लाखों करोड़ों दिल एक ही सवाल पूछेंगे, क्या स्पेन दूसरी बार के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनेगा या अर्जेंटीना लगातार दूसरा विश्व कप जीतकर स्वर्णिम इतिहास रचेगा. इस बारे में सुनते रहिए. फिलहाल विश्व कप फाइनल से पहले फ्रांस और इंग्लैंड आज रात 11 बजे तीसरे स्थान के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगे. इट्स गोइंग टू बी फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड. कोई मामूली मुकाबला नहीं है. उल्लेखनीय है कि ये सिर्फ तीसरे स्थान का मुकाबला नहीं बल्कि दो फुटबॉल महाशक्तियों की प्रतिष्ठा, स्वाभिमान और गौरव की भी जंग है. सेमीफाइनल की निराशा को पीछे छोड़ते हुए दोनों टीमें आखिरी बार मैदान पर अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार हैं. किलियान एम्बापे अभी भी गोल्डन बूट का प्रबल दावेदार है. जूड बेलिंगम और हैरी केन अभी भी भूखे प्यासे हैं. इसलिए आज रात 11 बजे से फ्लोरिडा के मायामी गार्डन्स में हर टैकल में आग होगी, हर पास में उम्मीद और हर गोल पर स्टेडियम गूंज उठेगा. ये मुकाबला है मॉरिशस को कब्जा करने वाले दो शासकों का. फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड आज रात 11 बजे लाइव एमबीसी 11 और एमबीसी प्ले पर. और इस मैच को लेकर कई बातें चर्चाएं हो रही हैं. दे मेड हिम ए डिफेंसिव प्लेयर, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और लगता है वो पगला गया है. गोल्फ और फुटबॉल को लेकर अब कोई फर्क नहीं है. ट्रंप गोल्फ खेलते समय उसकी मुलाकात हुई थी हैरी केन से और कहा कि ही इज एन इम्प्रेसिव अटैकर और उसे डिफेंस में खेलने का मौका दिया गया. सो ट्रंप अब गोल्फ और फुटबॉल के बीच भी कंफ्यूज्ड है. इससे पहले उसने बालोगन को लेकर फीफा के प्रेसिडेंट ज्ञानी इन्फांटिनो से भी बात की थी उसके रेड कार्ड को रद्द करने के लिए. सो इतना सब कुछ, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है जिसे डिफेंडर बना दिया गया, कहा ट्रंप ने हैरी केन के बारे में. और जहां तक थॉमस टुखेल का सवाल है, कहा कि लॉस इज स्कार वी कैरी नाउ, एक काला दाग है जिसे धोना ही पड़ेगा. आज रात 11 बजे फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड लाइव एमबीसी टीवी पर. फुटबॉल जगत से ही कुछ अन्य खबरें. मैनचेस्टर यूनाइटेड एकदम से ट्रांसफर बाजार में कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गया है. अपने मिडफील्ड को मजबूत करने के लिए यूरी चेलेमांस और आंद्रे सांतोस को साइन करने के बाद अब खबर यह है कि द रेड डेविल्स एएस रोमा के फ्रेंच इंटरनेशनल मानु कोने को भी ओल्ड ट्राफोर्ड ला रहे हैं. ऐसा मालूम पड़ता है कि मानु कोने ने भी हाँ कह दिया है. हालांकि चेल्सी ने अभी तक अपना उसका पीछा नहीं छोड़ा है. दाम 51 मिलियन पाउंड. माइकल कैरिक के रडार में वेस्ट हैम यूनाइटेड का डच विंगर क्रिसेंशियो समरविल भी है जिसने वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया, परंतु ऐसा तभी संभव होगा जब और यदि मार्कस राशफोर्ड बाहर का रास्ता अपनाता है. तो जहां तक लिवरपूल का सवाल है, तो डोमिनिक ज़ोबोस्लाई ने कल ही क्लब के साथ 5 साल के एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए और जेरेमी जैकेट और विक्टर मुनोज के बाद द रेड्स सरप्राइज

सरप्राइजिंगली बहुत ही निष्क्रिय इनएक्टिव हो गए हैं। फ्रांस का ब्रैडले बाकोला ऑफ लिमिट बताया जा रहा है, फिर भी कोशिशें जारी हैं। और इस बीच इंग्लैंड और टोटेनम हॉटस्पर का युवा डिफेंडर जेड स्पेंस अंजोनी इराउला की निगाह में आ गया है, किंतु ये 25 वर्षीय 25 ईयर ओल्ड स्टार डिफेंडर आंख मूंद कर नहीं आएगा। उसके कोच रोबर्टो डी ज़ेर्बी ने कह दिया कि 50 मिलियन पाउंड के ऊपर

0: टोटेनहम के अधिकारियों ने क्लब को मजबूती प्रदान करने के लिए कई की साइनिंग्स भी की है। इंटर मिलान भी जेड स्पेंस का प्रशंसक एडमायरर बन गया है। टीम टॉक के मुताबिक लिवरपूल आर लीडिंग द रेस टू साइन जापान मिडफील्डर कैशु सानो, जो जर्मन क्लब माइंस का खिलाड़ी है। द रेड्स उसके लिए 50 मिलियन पाउंड तक देने को तैयार है और लीड्स यूनाइटेड ने 34.1 मिलियन पाउंड की रिकॉर्ड फी पर सासुओलो के 23 वर्षीय 23-year-old डिफेंडर तारिक मुहारेमोविच को साइन कर लिया है। बोस्निया के इस 23-year-old इंटरनेशनल डिफेंडर ने लीड्स के साथ 5 साल के कंट्रैक्ट पर हस्ताक्षर भी कर लिए हैं। यूरोपा लीग विनर एस्टन विला ने 50 मिलियन पाउंड की रिकॉर्ड फी पर एससी फ्रीबर्ग के स्विस मिडफील्डर युआन मनजाम्बी को साइन कर लिया है। 20-year-old मनजाम्बी ने वर्तमान वर्ल्ड कप में 3 गोल स्कोर किए हैं और वो अपने 7 गोलों के साथ यूरोपा लीग यंग प्लेयर ऑफ द सीजन घोषित हुआ था। तभी से वो कोच उन्नई एमेरी की निगाह में आ गया था और अब वो विला पार्क में है। वैसे द विलेंस वुल्व्स के मिडफील्डर होआओ गोमेज को भी साइन करने के बहुत ही करीब है। दाम 38 मिलियन पाउंड। और ऐसा मालूम पड़ता है कि सऊदी लीग से बात न बन पाई तो लिवरपूल और इजिप्ट का फेरो मोहम्मद सलाह टर्की का रास्ता पकड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक 34 वर्षीय 34-year-old मोहम्मद सलाह और बेसिकतास के बीच एक समझौता तय हो पाया है, जिसके मुताबिक मोहम्मद सलाह को सालाना ईयरली 10 मिलियन यूरो की आमदनी मिलेगी प्लस 2 मिलियन बोनस के रूप में। इसलिए मोहम्मद सलाह की सलाह सुनते रहिए। एंड सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ हारने के बाद इंग्लैंड के कोच टोमास टुखेल पर घोर दबाव आने लगा है। उसको पद से हटाने की भी बात की जा रही है, हालांकि फुटबॉल एसोसिएशन एफए उसका समर्थन कर रहा है। अब टोमास टुखेल को वेन रूने का भी सपोर्ट प्राप्त है, जिसने कहा टू स्टिक विद टोमास टुखेल अनलेस पेप गार्डियोला इज अवेलेबल। उल्लेखनीय है कि साल 2028 में यूरोपियन चैंपियनशिप इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड में आयोजित किया जाएगा, इसलिए फॉलो ऑन ही बेहतर है। फिर फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप की बेल्जियम ग्रैंड प्री रेस कल रविवार को लगने वाली है। कल के दूसरे प्रैक्टिस में लीडर किमी एंटोनेली की जीत हुई, तो आज थर्ड प्रैक्टिस होगी और आज रात पोल पोजिशन के लिए भी रेस लगेगी। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन का जॉर्ज रसेल अब जनरल स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर आ गया है। वो मर्सिडीज के ही किमी एंटोनेली से केवल 25 अंक दूर है, तो तीसरे स्थान पर है फेरारी का लेविस हैमिल्टन, जो रसेल से केवल 7 अंक पीछे है। एंड फाइनली क्रिकेट में पहला वनडे 6 विकेट से हारने के बाद टीम इंडिया कल रविवार को लॉर्ड स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ अपना दूसरा एक दिवसीय मैच खेलने उतर रही है। भारतीय क्रिकेट का बुरा समय चल रहा है। टी20 में भी इंग्लैंड के हाथों उसकी खूब धुलाई हुई, इसलिए अब धोने का टाइम आ गया है। आज दांव पर है ट्रॉफी ही नहीं बल्कि सम्मान, गौरव और करोड़ों प्रशंसकों का गर्व। फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड आज रात 11 बजे एमबीसी टीवी पर लाइव। देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: थैंक यू विकास जी।
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Méga promo code quality déco. Tiles 30x30. Méga deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite et quartz. Oui, cassez-le la voix. La lumière moderne, prix choc.

देखते ही देखते वक्त गुजर रही है तेजी से. ऑलरेडी द एंड ऑफ योर चिलैक्स शो. मिलते हैं नेक्स्ट आवर में. अभी के लिए लकी अली की आवाज में दिस वन गोज आउट फॉर यू.

नमस्ते भोजपुरी में समाचार सुना जा। महंगाई के असर अभी मुर्शिद से केलों के बजट पर बनल बातें। इबर इस मार्च से जून महीना के बीच कई को जरूरी सामान और सेवा के दाम में बढ़ोतरी आल बातें। ये जानकारी स्टैटिस्टिक्स मुर्शिद की ताज़ा आंकड़ा में सामने आल बातें। रोती घरेलू गैस बिजली और ईंधन उस सब चीज में शामिल बातें जेकर में सबले जस्ती बढ़ोतरी दर्ज करल गल बातें। कुल मिला के स्टैटिस्टिक्स मुर्शिद मार्च से जून के बीच 14 गो चीज के दाम में बढ़ोतरी और खाली दो गो चीज के दाम में कमी दर्ज कर ले बातें। एक साफ

0: पता कि रोज़मर्रा के ज़रूरी खर्च अब भी मुर्शिस के परिवार के बजट पर भारी पड़ता। कैबिनेट मॉरिशस और भारत के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में बदलाव के प्रोटोकॉल की लागू करे की मंजूरी दी दिले बाते एकर उद्देश्य दुबार टैक्स लगे की समस्या की खत्म करे की बाते जिमें टैक्स एग्रीमेंट की गलत फायदा नहीं उठावल जा सकी। भारत के अधिकारी के नवा स्पष्टीकरण के बाद मॉरिशस ई प्रोटोकॉल की मंजूरी देवे की फैसला कर ले बाते। बगाचल में नवा अमरीकी दूतावास के निर्माण काम 62% पूरा हो गल बाते। ये प्रोजेक्ट जेकर लागत 14 बिलियन रुपये की बाते December 2027 से ले पूरा होवे की उम्मीद बाते। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमेरिका के अफ्रीकन अफेयर्स खाते असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सारा ट्रोटमान ई शुक्रवार के निर्माण की जगह के दौरा कर लंजा। इस मौका पर वो प्रतीकात्मक रूप से कंक्रीट डाले के कार्यक्रम में भी हिस्सा ले लंजा। रोहिदेश में ईरान जोर्डन में तैनात कई गो अमरीकी सैन्य विमान पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला करे के दावा कर ले बाते। ये कार्रवाई ईरान में कई गो जगह पर रात भर हो अमरीका की हमला के जवाब में कर गल बाते। जिक्र में कमती 8 जना के मौत हो गल बाते। ये घटना जोर्डन के सेना के बयान के बाद कोल बाते। जिक्र में बोला गया रहा कि वो 3 ईरानी मिसाइल के मार गिरा दिले बाते और जोर्डन किसी हताहत या नुकसान की सूचना नहीं दिले बाते। इकर से मध्यपूर्ण में युद्ध जस्टी तेज हो गल बाते। तो ये रहा भोजपुरी में समाचार। आप लोग के ध्यान खाते हैं, धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: the Weather Broadcast with Winners.
1: On est tous winners.
2: Your weather forecast on RM2.
3: Radio Musti.
4: पहाड़ी इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन दोपहर बाद के समय देश के उत्तरी इलाकों, पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी और रात्रि के समय भी उत्तरी इलाकों और पूर्वी इलाकों में हल्की वर्षा होगी और बाद में दक्षिणी इलाकों, पश्चिमी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर भी बारिश होगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 30 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा हल्की एवं सामान्य रहेगी और जो दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी। सूर्योदय आज 7:45 और सूर्यास्त शाम के 5:47।
2: Your weather forecast on RM2.
3: Radio Musti.
5: Cet hiver, du 10 au 23 juillet, retrouvez chez Winners tout ce qu'il vous faut pour profiter de la saison à petit prix. Parce que rien ne vaut de bons repas et de précieux moments en famille pour vous réchauffer pendant l'hiver. Tout vous attend chez Winners. Les 250 g de café granulé Winners à 139,95 € et les 3 kg de lessive en poudre machine ou main d'Ethos à 149,95 €. Qualité, variété et petit prix, tout est réuni sous un même toit chez Winners. Cet hiver, faites le bon choix.
6: On est tous Winners.
2: RM2
3: Radio Musti.
0: Timeless Tadka.
3: RM2
0: Timeless Tadka.

0: आठ बजकर 16 मिनट हुए हैं सुबह का टाइम है और आपकी सैटरडे को मस्त बनाने के लिए टाइमलेस तड़का हाजिर है एवरग्रीन गोल्डन हिट्स के साथ मिक्स्ड विद सम रीमेक्स और एक गेम भी है इस आओ में अगर आप टिकट जीतना चाहते थे अनदर चांस मिलने वाला है सो स्टे ट्यून्ड राइट हियर RM2 रेडियो मस्ती पर ही
1: RM2
2: रेडियो मस्ती
3: Croustille, on fait quoi aujourd'hui?
4: On va à l'aventure!
3: À l'aventure?
4: Oui, Soso, à l'aventure du sucre!
5: Découvre l'histoire du sucre avec Soso et Croustille. En ce moment, dans ton Cheeky Fun Meal, un ticket enfant pour l'aventure du sucre t'est offert. Profites-en vite!
6: Fingerling good, KFC!
7: Depuis premier zoo, nous fin tout zoo là. À zoo de l'écoute, à zoo de côté. À chaque moment important des œufs de la vie. Nous extra happy trouvons œufs tous les jours connectés, grandis, épanouis. Et ensemble, nous pouvons continuer. Continuer, causer, rier, potaser, sauter, piler, danser, amuser, rêver, vibrer.

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: And yes, so once again, lekar aaye hain mauka for you to win a ticket to the 90s Golden Era Tour featuring Abhijit Bhattacharya. And question काफी simple है क्योंकि मैंने बता दिया several times. आपको बताना है कि अभिजीत भट्टाचार्य मॉरिशस में लाइव कंसर्ट के लिए कब आ रहे हैं. आपको बतानी है ऑन विच डेट इज द कंसर्ट बीइंग हेल्ड. 54991294 पर जल्दी से सेंड मी योर आंसर्स.
3: रेडियो मस्ती सुनते रहो.

0: Express तड़का
1: RM2।
2: यस गेम ऑन गोइंग है। सवाल था कि अभिजीत भट्टाचार्य कब आ रहे हैं लाइव कंसर्ट के लिए मॉरिशस। इजी सवाल का जवाब किसके पास है? अरे ऑलमोस्ट ईच वन ऑफ यू ने सही जवाब

0: दिया, इतने बड़े फैन हो आप, लेकिन विनर तो एक ही हो सकता है। एंड लकी ड्रो के बाद नाम आया। एंड यस, लकी ड्रो के बाद हमें मिला गीता राम राचा जी का नाम एंड नंबर। कंग्रेचुलेशंस डी, आपको मिला है एक टिकट टू द गोल्डन 90s एरा टूर। टिकट कलेक्ट करने के लिए आप आ सकते हो MBC वीकडेज पर 3 बजे से पहले। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू यू गीता जी। एंड कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन। अभी के लिए द म्यूजिक गोज ऑन।
1: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट।
2: टक टक बॉलीवुड।

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को

0: हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July, तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: NBC Radio presents One Day RJ. NBC Radio पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस.
1: Don't miss it.
2: Timeless Tadka.
3: RM2.
2: Timeless Tadka.

0: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
1: Get ready for the biggest World Cup ever!
2: 2026 FIFA World Cup.
1: रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
2: रेडियो मस्ती के साथ
1: वर्ल्ड कप मैगजीन।
3: यस सर, फुटबॉल फैंस तैयार हो जाइए, कल संडे 19 जुलाई को फीफा वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला होने वाला है। डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना का सामना होगा स्पेन से न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में। एक तरफ लायनेल मेसी अपनी टीम को बैक टू बैक वर्ल्ड कप जिताने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ 90 इयर्स ओल्ड के ओ यंग सेंसेशन लामिन यमाल के साथ स्पेन ट्रॉफी पर नजर जमाए बैठी है। देखना होगा कि इस बार वर्ल्ड कप किसके नाम होता है। बोथ मैचेस लाइव होंगे एमबीसी 11 पर, स्पेशल प्रोग्राम रेडियो मस्ती पर भी विद लॉट्स ऑफ प्राइजेस। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाइबिंग विद योर RM2 रेडियो मस्ती।
1: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates

एंड इसी गाने के साथ टाइम हो चला है फॉर मी एंड मनीष से बाय। होप यू हैड अ ग्रेट ग्रेट मॉर्निंग स्टार्ट, जैसे गाने ने बोला बढ़िया। आई होप यू हैव अ बढ़िया डे यू टू एज वेल। योर टाइम मिस्टर का कंटिन्यूज टिल 11 AM, सो हैव अ ग्रेट सैटरडे विद योर RMG रेडियो मस्ती।

0: समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है टीना, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते टीना।
1: नमस्ते। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। महंगाई का असर अभी भी मॉरिशस के लोगों के बजट पर बना हुआ है। इस साल मार्च से जून के बीच कई जरूरी सामान और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों में सामने आई है। रोटी, घरेलू गैस, बिजली और ईंधन उन चीज़ों में शामिल है जिनकी कीमतों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने मार्च से जून के बीच 14 चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी और केवल 2 चीज़ों की कीमतों में कमी दर्ज की है। इससे साफ है कि रोजमर्रा के जरूरी खर्चे अब भी मॉरिशस के परिवारों के बजट पर भारी पड़ रहे हैं। कैबिनेट ने मॉरिशस और भारत के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में बदलाव के प्रोटोकॉल को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है कि दो बार टैक्स लगने की समस्या को खत्म किया जाए और टैक्स अग्रीमेंट का गलत फायदा न उठाया जा सके। भारत के अधिकारियों के नए स्पष्टीकरण के बाद मॉरिशस ने इस प्रोटोकॉल को मंजूरी देने का फैसला लिया।

0: है। बगा चल में नए अमरीकी दूतावास का निर्माण काम 62% पूरा हो चुका है। ये परियोजना जिसकी लागत लगभग 14 बिलियन रुपये है दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। गणराज के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमेरिका की अफ्रीकन अफेयर्स के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सारा ट्रुथमान ने इस शुक्रवार को निर्माण स्थल का दौरा किया और इस अवसर पर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कंक्रीट डालने के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और अपार्टाइड के खिलाफ संघर्ष के विश्व प्रतीक नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इतिहासकार डॉक्टर सत्येंद्र पीरचम के अनुसार नेल्सन मंडेला केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे उपनिवेशवाद, अत्याचार और नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक भी थे। और विदेश में अमरीकी सेना ने कल ईरान पर लगातार 7वीं रात हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इसकी पुष्टि की है। अमरीकी सेना की कार्रवाई के बाद ईरान ने भी चेतावनी दी है कि कोई भी सीमा सुरक्षित नहीं रहेगी। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे दीजिए, नमस्कार।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Timeless Tarka. RM2. Timeless Tarka.

0: Express तड़का
1: RM2
2: वेल फ्रेंड्स, सुबह के 9:08 हो चुके हैं. सैटरडे मॉर्निंग 18th of July, आपका वार्म वेलकम करते हैं ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. वेल, इट्स टाइम फॉर योर टाइमलेस तड़का और मैं हूं परी आपके साथ. वेल दोस्तों, आपके लिए इस वीकेंड को खास और खूबसूरत बनाने हमारे प्यारे प्यारे गाने. एंड उम्मीद करते हैं आपकी सैटरडे मॉर्निंग स्टार्ट हुई है एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त. वैसे दोस्तों, हर दौर में म्यूजिक का हमेशा थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट रहा है. एंड एवरी डेकेड हैज इट्स ओन स्टोरी टू से. सो यहाँ पर कुछ ऐसे गाने हम लेकर आए हैं जिन्हें सुनते सुनते आपका भी वो जो टाइमलेस तड़का है वो लगने वाला है. सो आप भी साथ निभाते रहिए ऑन दिस सैटरडे मॉर्निंग. मैं हूँ परी आपके साथ एंड वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 5499-1294. दिल का हाल बयां करना चाहते हैं तो बस आपका हो रहा है बेसब्री से इंतजार. एंड टू गेट यू इन द वीकेंड मूड वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. शामिल होता हुआ ये गाना taken from the film Vishwatma, dedicate kar rahe hain aap sabhi ke naam. Good morning.

0: Express Tadka
1: RM2.
2: सो वेल फ्रेंड्स, सैटरडे मॉर्निंग है और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो हमारे सभी लिसनर्स, बस आपके लिए ये खास शो हम लेकर आए हैं जिसका नाम है टाइमलेस तड़का, जहां पर हर गाना सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक याद, एक एहसास और एक खूबसूरत कहानी लेकर आता है. वैसे मैं हूं परी आपके साथ और रहने वाला है आपका और मेरा साथ कुछ और घंटों तक, और हम साथ मिलकर तय करने वाले हैं इस म्यूजिकल जर्नी को, जहां पर हम बजाने वाले हैं वो टाइमलेस क्लासिक्स जो कभी पुराने नहीं होते. सो बस दोस्तों, सैटरडे मॉर्निंग है, कॉफी हो या चाय, वीकेंड का मूड हो या फिर फैमिली के साथ रिलैक्सिंग टाइम, बस वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कीजिए क्योंकि नॉस्टैल्जिया का तड़का यहाँ पर लगने वाला है. It's 9:21 दोस्तों, मॉर्निंग टाइम एंड इट्स सच अ रिलैक्सिंग मॉर्निंग. वैसे तो हम जानते हैं कि सैटरडेज बहुत सारे हमारे दोस्त काम करते हैं, लेकिन फिर भी वीकेंड का जो मजा है वो वीकेंड ही लेकर आता है. वीकेंड की खुशबू, ओ माय गॉड, फ्राइडे इवनिंग से ही वो खुशी का एहसास होना शुरू हो जाता है. एंड आई एम श्योर दैट यू आर ऑल्सो एंजॉइंग आपकी मॉर्निंग हमारे साथ. आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन का मैं यानी कि परी कर रही हूँ इंतजार. वैसे यहाँ पर माला जी हमारा साथ दे रही हैं. आप हैं माला सुकनौत फ्रॉम हरिश्मा फ्लाक, और साथ देने के लिए शुक्रिया. चलिए यहाँ पर आप अपने स्वीट मैसेजेस हम तक पहुँचा रही हैं, तो ऐसे ही पहुँचाते रहिए. और यस, जीतने के मौके आपको मिलते रहेंगे बिकॉज आपके लिए कुछ खास गेम्स भी होने वाली है कुछ और घंटों में. सो आपकी इस मॉर्निंग को खास एंड स्पेशल बनाने लेकर आए हैं कुछ प्यारे प्यारे गाने. एंड आई एम श्योर द नेक्स्ट वन इट्स गोइंग टू बी योर फेवरेट बिकॉज जैसे हमने कहा, टाइमलेस क्लासिक्स आपके लिए हम लेकर आए हैं. इट्स टाइम फॉर योर टाइमलेस तड़का ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. So taking you down memory lane, Kumar Sanu, Asha Bhosle ki awaazein from the

वेल फ्रेंड्स, जैसे हम कहते हैं, हर गाना एक कहानी सुनाता है, हर गाना कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल लेकर आता है. एंड दैट्स टेकन फ्रॉम द फिल्म कभी हां कभी ना. इस वक्त हमारी प्यारी सी रेखा जी हमारा साथ दे रही हैं, कहती हैं गाना हो जाए फॉर अंश. एंड प्यारा सा बेटा है वो, बोझे से हमारा साथ दे रहा है. एंड फॉर यू रेखा जी, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग आपको. वृंदा बंगारू साथ दे रही हैं रोजबेल से, और कहती हैं कि आज जयान अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड उनके लिए स्पेशल स्पेशल विशेज, बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं. सो चलिए, लव एंड ब्लेसिंग्स हम पहुंचा रहे हैं जयान तक. इट्स अ बर्थडे और मेकिंग इट स्पेशल विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. सो वेल फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती, नॉट टू फॉरगेट, आपका इंतजार हो रहा है बेसब्री से ऑन 5499-1294. अभी के लिए सुदित नारायण, अमित कुमार की आवाजें, अ ब्यूटीफुल ट्रैक हमारे सभी लिसनर्स के नाम. इट्स योर टाइम विस्तर का ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: हो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: So well friends, latest tracks हो या फिर pure nostalgia, आपको सब मिलता है on RM2 Radio Masti. अभी के लिए it's time for your timeless classics and yes, timeless तड़का लेकर आए हैं आपके लिए. This one goes out for you Mr. Suraj. साथ दे रहे हैं आप. Good morning.

0: रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: सोवेल यहाँ पर मिस्टर सूरज कहते हैं ये गाना जो है 40 इयर्स बैक लेकर जाता है जब मैं बस 4 साल का था एंड द सॉन्ग वाज ऑल ओवर। यस ये गाना हमें भी याद है एंड अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की ब्यूटीफुल केमिस्ट्री फ्रॉम द फिल्म आखिरी रास्ता डेडिकेट किया ये गाना हमने आपके नाम एंड फॉर ऑल योर लव्ड वंस। और साथ ही यहाँ पर मॉर्निंग में हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी कुछ और लिसनर्स, सो गुड मॉर्निंग विशेस आप सभी के नाम। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग ऑल द लव। यहाँ पर इस वक्त मेधा, मनीष, श्रेया, आर्यन, नील, शीतल, विकी, रतीना, नितिन एंड संगीता साथ दे रहे हैं मोटा एब्लॉन्ट से। सो वी हैव दिस गाना आपके नाम एंड साथ ही फॉर अब्दुल एंड सायरा बानू, विशिंग एवरी वन अ वंडरफुल मॉर्निंग एंड अ लवली डे अहेड। थैंक यू फॉर योर गुडी गुड विशेस। ये एक प्यारा सा गाना डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम भी। एंड आ गए हैं यलेश अपनी गुड विशेस लेकर ऑन रेडियो मस्ती और कहते हैं हैप्पी सैटरडे टू एवरीवन। सभी शाम परिवार सुरिनाम से साथ दे रहे हैं। वेल अ ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के नाम, एंजॉय दिस वन। मैं हूं परी आपके साथ। इट्स टाइम फॉर योर टाइमलेस तड़का। गुड मॉर्निंग।

And well, it's 9:54. इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर. लौट कर आएंगे with some more beautiful songs. Thank you so much, दोस्तों. इतने प्यार से आप हमारा साथ दे रहे हैं. Not to forget, that's your timeless तड़का. मैं हूं परी आपके साथ on RM2 Radio मस्ती. Have a wonderful weekend. कुछ good songs आपके लिए, आपके इस weekend को खास and special बनाने के लिए.

0: The time is brought to you by
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
2: Radio Musti.
0: North, South,
2: 103.5.
0: East, West,
2: 96.4.
0: Center,
2: 99.4.
3: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check, 10 a.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है टीना, आपको नमस्कार।
5: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। महंगाई का असर अभी भी मॉरिशस के लोगों के बजट पर बना हुआ है। इस साल मार्च से जून के बीच कई जरूरी सामान और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों में सामने आई है। रोटी, घरेलू गैस, बिजली और ईंधन उन चीज़ों में शामिल है जिनकी कीमतों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कैबिनेट ने मॉरिशस और भारत के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में बदलाव के प्रोटोकॉल को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है दो बार टैक्स लगने की समस्या को ख़त्म करना और टैक्स अग्रीमेंट का गलत फ़ायदा न उठाया जा सके। भारत के अधिकारियों की नई स्पष्टीकरण के बाद मॉरिशस ने इस प्रोटोकॉल को मंजूरी देने का फैसला लिया है। बागातेल में नए अमरीकी दूतावास का निर्माण काम 62% पूरा हो चुका है। ये परियोजना जिसकी लागत लगभग 14 बिलियन रुपये है दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर कुकुर और अमरीका की अफ्रीकन अफेयर्स के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सारा ट्रोटमान ने कल निर्माण स्थल का दौरा किया और उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कंक्रीट डालने के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और अपार्टाइड के खिलाफ संघर्ष के विश्व प्रतीक नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इतिहासकार डॉक्टर सत्येंद्र पियटमक के अनुसार नेल्सन मंडेला केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे बल्कि वे उपनिवेशवाद, अत्याचार और नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक थे। विदेश में

0: अमरीकी सेना ने कल ईरान पर लगातार सातवीं रात हमले की अमरीकी सेंट्रल कमान ने इसकी पुष्टि की है। अमरीकी सेना की कार्रवाई के बाद ईरान ने भी चेतावनी दी है कि कोई भी सीमा सुरक्षित नहीं रहेगी। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई, थोड़ी देर में शोक समाचार। बंधुलेन खांबा में 46 साल के 46 years old के श्री धर्मवीर राम सहाय, जो ऋषि नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। अंकर थी आज सुबह तीन बजे उनके घर बंधुलेन खांबा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खांबा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। इंदिरा गांधी रोड पिछड़ा फ्रेमी 60 साल की 60 years old की श्रीमती उमा पादारत पैदाइशी नाम रामचंद और जो फिया नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनकी बेटी श्रीमती स्वीटी शाम के घर इंदिरा गांधी रोड पिछड़ाफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिछड़ाफ्रे की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: без тарка.
1: RM2.
2: So well friends, it's your timeless तड़का जहां पर आपके लिए हम लेकर आते हैं कुछ timeless classics and मैं हूं परी आपके साथ. आपके weekend की शुरुआत हुई है कुछ beautiful nostalgic गानों के साथ and I do hope that you are enjoying the songs. इस वक्त अश्मिता जी हमारा साथ दे रही हैं and I'm sure this गाना made your morning और उम्मीद करते हैं इस गाने के साथ आपका दिन भी एकदम खूबसूरत सा बीते. यही wishes हैं हमारे सभी listeners के नाम. So well friends, मैं हूं परी आपके साथ. ये है आपका RM2 Radio मस्ती जहां पर good music कर रहा है आपका इंतजार and मैं कर रही हूं आपके messages, आपके dedications का इंतजार on 5499-1294.
3: Radio Mastic.

0: लेयरिंग इज द की. एक स्टाइलिश जैकेट या फिर एक लॉन्ग कोट के साथ एक सिंपल सा आउटफिट भी क्लासी लगता है. सो आज एक वंडरफुल आउटफिट आप भी ट्राई कर सकते हैं. स्कार्फ सिर्फ वार्म्थ के लिए नहीं होते लेकिन एक स्टाइल स्टेटमेंट भी होते हैं, और एक कलरफुल स्कार्फ इंस्टेंटली आपके लुक को और भी एनहांस करता है. बूट्स जो है वो विंटर के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ये तो हम सब मानते हैं. सो कंफर्टेबल एंकल लेंथ या फिर नी हाई बूट्स आपके लुक को एकदम एलिवेट कर देते हैं. सो आज ये सिंपल टिप्स आपके आउटफिट को एकदम स्टाइलिश बना सकते हैं, ट्राई कीजिए. ये था एक फैशन टिप आपके लिए.
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट.
3: टक टक बॉलीवुड.

0: 92 रेडियो मस्ती
1: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो टाइल्स 30x30 मेगा डील लो टाइल्स 60x60 सीपीए सेल्स लो ग्रानाइट एंड क्वार्ट्ज प्री कासे लो लावो ला लुमिएर मॉडर्न प्री शॉक लो

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: सो वेल फ्रेंड्स, इस ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. उसके बाद टाइमलेस से तड़का के बाद इट्स गोइंग टू बी टाइम फॉर योर बॉली ब्रंच. सर्व करने वाले हैं कुछ ब्यूटीफुल हिट्स आपके लिए. एंड वेल, यहां पर हमारे साथ कनेक्टेड हमारे कुछ दोस्त रोशनी, कहां यहां आप गानों को एंजॉय कर रही हैं. सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आपके नाम और इसी गाने के साथ विशिंग यू अ वंडरफुल वीकेंड. साथ ही यहां पर अनीता जी फ्लिकर फ्लैक से हमारा साथ दे रही हैं आप और कहती हैं रेडियो मस्ती के साथ एंजॉयिंग एवरी मोमेंट. ये हुई ना बात, वेल साथ एंजॉय करती रही और अपनी इस मॉर्निंग को खास बनाए हमारे इन प्यारे गीतों के साथ. आशा जानू कॉटेज से एंजॉय कर रही हैं आप भी सिलेक्शन को और कहती हैं ग्रेट सैटरडे विशेस. ये है फॉर ममा कुमारी, नेफ्यूज शुभम, ऋषभ, दीदी आरती, जीजू राज, सभी जानू परिवार के नाम एंड सभी लिसनर्स के लिए आप पहुंचा रही हैं गुडी गुड विशेज. एंड सूरज जी, चलिए आपकी मॉर्निंग हो गई सेट इन गानों के साथ, तो हम भी खुश. ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए. थोड़ी देर में लेकर आएंगे योर बॉली ब्रंच. मैं हूं परी आपके साथ ऑन रेडियो मस्ती.

0: दिन के ठीक 11 बजे हैं। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है टीना, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कैबिनेट ने एजुकेशन कंट्रोल एंड यूज ऑफ पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस ऑन स्कूल प्रेमिसेस रेगुलेशन 2026 को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत विद्यार्थियों को स्कूल परिसर में निजी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। मोबाइल साथ लाया जा सकेगा, लेकिन उसे साइलेंट मोड में रखकर सुरक्षित रखना होगा। केवल स्वास्थ्य संबंधी जरूरत होने पर या शिक्षक की अनुमति से पढ़ाई के लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकेगा। शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को भी विद्यार्थियों की मौजूदगी में निजी मोबाइल का उपयोग करने से बचना होगा, सिवाय आधिकारिक या शैक्षिक कार्यों के लिए। बार बार नियम तोड़ने पर अभिभावकों को सूचित किया जाएगा और जब्त किया गया मोबाइल वापस लेने के लिए उन्हें स्कूल आना होगा। महंगाई का असर अभी भी मॉरिशस के लोगों के बजट पर बना हुआ है। इस साल मार्च से जून के बीच कई ज़रूरी सामान और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों में सामने आई है। रोटी, घरेलू गैस, बिजली और ईंधन उन चीज़ों में शामिल है जिनकी कीमतों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और अपार्टाइड के खिलाफ संघर्ष के विश्व प्रतीक नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इतिहासकार डॉक्टर सत्येंद्र पीरचंबा के अनुसार नेल्सन मंडेला केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे उपनिवेशवाद, अत्याचार और नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक थे। और बगातेल में नई अमरीकी दूतावास का निर्माण काम 62% पूरा हो चुका है। यह परियोजना, जिसकी लागत लगभग 14 बिलियन रुपये है, दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमरीका की अफ्रीकन अफेयर्स के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सारा ट्रोटमान ने कल निर्माण स्थल का दौरा किया। विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच 8वें दिन सैन्य टकराव नागरिक ठिकानों तक पहुंच गया, जिसमें अमेरिका ने ईरान के पुलों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। बंधुलेन कॉम्बा में 46 साल के 46 years old के श्री धर्मवीर राम सहाय जो ऋषि नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनके अर्थियात सुबह तीन बजे उनके घर बंधुलेन कॉम्बा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉम्बा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। इंदिरा गांधी रोड पर चिराफे में 60 साल की 60 years old की श्रीमती उमा पदारत पैदाश नाम रामचंद और

0: शफी या नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनकी बेटी श्रीमती स्वीती शाम के घर इंदिरा गांधी रोड पृथ्वीराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पृथ्वीराफे की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। मोसलमान गुलाम अली टेरोजमी 55 years old के जनाब मोहम्मद रियाज जोकू जो रियाज नाम से ज़रा जाने जाते थे का इंतकाल हो गया। उनका जनाजा आज दिन के सवा बारह बजे उनके मकान मुसलमान गुलाम अली टेरोज से निकाल कर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए टेरोज की गुलाम अली कादरी मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए रिश्ते के कब्रस्तान फ्यूनरल जुडियात क्वार्टर पास नून। कांकारोल रिविया डी क्रियोल में 55 साल के 55 years old के श्री सुनील तुलसिया जो सुपुप नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके घर कांकारोल रिविया डी क्रियोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टोम्बो में की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Body Branch, RM2, Radio Masti.

0: ब्रांच
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: So well friends, after timeless tarka, it's time for your Bolly brunch, जहाँ पर हम सजा कर लाए हैं एक beautiful platter of wonderful songs, जिन्हें सुनते हुए आपका ये जो official weekend start हुआ है वो और भी मस्ती भरा होने वाला है. So well friends, मैं हूँ परी आपके साथ. उम्मीद करते हैं that you are enjoying your छुट्टी वाला दिन, अगर छुट्टी नहीं भी है काम भी कर रहे हैं. So we are trying our best कि हम आपके काम में भी थोड़ा सा entertainment का dose दे सके, और आप तो साथ देते हैं हमेशा, काम पर हो, घर पर हो, drive कर रहे हो, seaside हो, जहाँ कहीं भी हो, आप चुनते हैं रेडियो मस्ती को. सो थैंक यू सो मच रेडियो मस्ती तक इतना प्यार पहुंचाने के लिए. और हम भी यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि इन प्यारे प्यारे गानों के साथ आपके इस सैटरडे को, आपके इस वीकेंड को हम खास और लाजवाब बनाएं. सो दिस वन गोज आउट आप सभी के नाम जो हमारा साथ दे रहे हैं, ऑल द फैंस ऑफ कुनाल गांजा वाला एंड एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. चलिए दोस्तों, सैटरडे का मूड सेट करते हैं. इट्स टाइम फॉर योर बॉली ब्रांच, योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस. 5499-1294 पर

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti.

0: ब्रांच
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: सो वेल फ्रेंड्स, ब्रंच टाइम जहां पर आप अपने वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं लेजी लेजी मॉर्निंग के साथ। जब शुरुआत होती है तो दिन एकदम परफेक्ट सा लगता है। एवरीडे तो भाग दौड़ में वक्त कहां निकल जाता है पता नहीं चलता, लेकिन जब वीकेंड आता है तभी तो कुछ मौका मिलता है जहां पर हर एक पल हर एक मोमेंट को आप एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल द मैसेजेस जो यहां पर आप पहुंचा रहे हैं, एंड यहां पर हमारी प्यारी सी आरती गुरचैन साथ दे रही हैं आप। सो विशिंग यू वंडरफुल मॉर्निंग एंड विशिंग यू गुड हेल्थ एंड गुड विशेज आपके लिए। कीप स्माइल and be happy always. और यहाँ पर कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू पापा सत्यानंद भरत ऑफ पोर्ट लुइस, एंड ये है उनकी डॉटर मनसा माया डिम्पल, उनके बेटे हैं राजीव, और गॉड ब्लेस यू ऑलवेज पापा, ये विशेज हैं उनके डियरेस्ट पापा के नाम। हमारी प्यारी सी झाना जी ऑल द वे फ्रॉम फ्लाक लेकर आई हैं उनकी स्वीट विशेज, कहती हैं कि आपकी स्वीट जो बातें हैं वो सुन रही हूँ, रेडियो मस्ती सुन रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ अपने वीकेंड को, ये हुई ना बात। चलिए सो अभी के लिए अगला गाना, इसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर ऑल योर फैमिली एंड All your loved ones. बेटियां हैं रीमा, जनिता, सेष्टा, अंशनी, सिल्विया, साथ दे रहे हैं यूवी, कृषि, शिवसरन परिवार फ्रॉम फ्लाक। सो हैव अ वंडरफुल टाइम। एंड चलिए यहां पर हमारी प्यारी सी रोशनी कह रही है कि मैं फिर टपक गई हूं। अरे आप टपकती कहां है, आप तो प्रगट होती है और हमें अच्छा लगता है जब भी आप आती है, जब भी आपके मैसेजेस मिलते हैं वी फील वेरी हैप्पी। सो ऑलवेज स्टे कनेक्टेड और ये प्यार हम तक पहुंचाती रहिए अपने मैसेजेस के जरिए। डेविसन फ्रॉम लाल माची हमारा साथ दे रहे हैं आप भी। सो अगला गाना होगा आपके नाम एंड सेंडिंग अ लोड्स ऑफ गुड विशेस। आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशन हैपनिंग 5499-1294 पर। मैं हूं परी आपके साथ एंड दैट्स योर बॉली ब्रांच ऑन रेडियो मस्ती।

और जैसे हम कहते हैं दोस्तों, कुछ गाने होते हैं खास एंड स्पेशल, एंड दिस वन वाज डेडिकेटेड स्पेशली फॉर डियरेस्ट पंकज. जब भी यहाँ स्टूडियो में होते थे ये गाना हमेशा चलाते थे. सो वेल, कुछ यादें हमेशा साथ रहती हैं और आपका साथ भी हमेशा रहे हमारे साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती. अभी के लिए इट्स टाइम फॉर योर बॉली ब्रांच. गुड म्यूजिक आपके लिए ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती.

0: welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 12 PM. देश विदेशी खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है टीना, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कैबिनेट ने एजुकेशन कंट्रोल एंड यूज ऑफ पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस ऑन स्कूल प्रमिसेस रेगुलेशन 2026 को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत विद्यार्थियों को स्कूल परिसर में निजी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। मोबाइल साथ लाया जा सकेगा लेकिन उसे साइलेंट मोड में रखकर सुरक्षित रखना होगा। केवल स्वास्थ्य संबंधी जरूरत होने पर या शिक्षक की अनुमति से पढ़ाई के लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकेगा। और शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को भी विद्यार्थियों की मौजूदगी में निजी मोबाइल का उपयोग करने से बचना होगा सिवाय आधिकारिक या शैक्षिक कार्यों के। और बार बार नियम तोड़ने पर अभिभावकों को सूचित किया जाएगा और जब्त किया गया मोबाइल वापस लेने के लिए उन्हें स्कूल आना पड़ेगा। ब्रसल्स के दौरे पर गए विदेश मंत्री रितेश रामफल ने गुरुवार को यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोश सेफकोविक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अगले साल यूरोप मॉरिशस बिजनेस फोरम आयोजित करने पर सहमति जताई ताकि आर्थिक सहयोग और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। उसके अलावा अफ्रीका, कैरेबियन और पैसिफिक देशों के संगठन की मंत्री परिषद की बैठक के दौरान मॉरिशस के विदेश मंत्री को अपने समकक्षों का समर्थन मिला। ये समर्थन यूके द्वारा कुछ खाद्य उत्पादों पर दी जाने वाली शुल्क रियायतों को निलंबित करने के फैसले के खिलाफ मिला। ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएशन इस शनिवार को फ्लैग के भुनो चौंग हॉस्पिटल में अपना छठा केंद्र शुरू कर रहा है। इसका नाम शहाल जिन टूसैन ब्रेस्ट कैंसर केयर सेंटर रखा गया है। ये केंद्र शहाल जिन टूसैन को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है जिनका निधन ब्रेस्ट कैंसर के कारण हुआ था। इस नए केंद्र में कई तरह की सहायता सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिसमें हर सप्ताह सामान्य चिकित्सक से परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता और मरीजों के लिए विक उपलब्ध कराना भी शामिल है। विदेश में अमरीका और ईरान के बीच आठवें दिन सैन्य टकराव नागरिक ठिकानों तक पहुंच गया है जिसमें अमरीका ने ईरान के पुलों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में एक शोक समाचार। कांकारोल रिवियरा डी क्रियोल में 55 साल के 55 के श्री सुनील तुलसिया जो सुपुप नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। आज दिन के ढाई बजे उनके घर कांकारोल रिवियरा डी क्रियोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो में बमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
0: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Body Branch, RM2, Radio Masti.

0: Tak Bollywood.
1: Radio Masti. सो वेल फ्रेंड्स, वीकेंड है और वीकेंड में आपके लिए हम लेकर आए हैं बॉली ब्रंच. जैसे हमने कहा, ब्यूटीफुल प्लेटर ऑफ गुड म्यूजिक, बॉलीवुड के कुछ फेमस हिट्स आपके इस वीकेंड को खास और स्पेशल बनाने. मैं हूं परी आपके साथ, आप भी साथ दे रही हैं. सो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर.

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

So well friends, दोपहर का वक्त है जहां पर that's your Bolly brunch और हम लेकर आए हैं कुछ प्यारे गाने आपके लिए. It's 12:25, थोड़ी ही देर में लेकर चलेंगे आपको Shaun the Mas for your races. साथ दे रहे हैं आप on RM2 Radio मस्ती. So कुछ good music आपके लिए, best mix of music जहां पर नए पुराने गानों का mix लेकर आए हैं. जैसे हमने कहा हमारे बॉलीवुड ब्रंच में होता है प्लेटर, एक ऐसे ब्यूटीफुल बुके के साथ हम आपकी इस आफ्टरनून को सजाते हैं जहां पर नए दौर पुराने दौर सभी गानों को आप एंजॉय कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन सेंड अस योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर. फॉर नाउ कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाजें फ्रॉम द फिल्म राजा भैया वी हैव दिस गाना आप सभी के नाम. एंजॉय दिस वन एंड वंस अगेन बो वीकेंड.

वेल आपका दिल भी डिंग डांग डिंग कर रहा है, करना भी चाहिए बिकॉज आज है वीकेंड और हर एक मोमेंट को खास और स्पेशल बनाना है बिकॉज मौके तो मिलते हैं मुश्किल से. आफ्टर अ लॉन्ग वर्किंग वीक इट्स टाइम टू रिलैक्स, इट्स टाइम टू चिलैक्स. लेकर आए हैं आपके लिए बॉली ब्रांच, मैं हूं परी आपके साथ. एंड वेल अभी के लिए गाना फॉर हस्बैंड विशाल, साथ में है बेटी श्रेया, बेटा अनिल, पापा सतीश रामदेन एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम प्रिया अपारू न्यू ग्रोव से. भेज रही है प्यार अपने पूरे परिवार के नाम, सभी के लिए लोड्स ऑफ लव. एंड निर्मला जी फ्लाक से कहती है गाना हो जाए उन तमाम लोगों के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. सो थैंक यू सो मच निर्मला जी, साथ दे रही हैं आप. सो वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपकी इस आफ्टरनून को हम सजा रहे हैं विद अ बॉली ब्रांच. सो एंजॉय दिस वन.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: And well friends, घड़ी की टिक टिक यही इशारा करते हुए that it's time for Pari to say goodbye and sign off. मेरे बाद आ रही है Hansini to continue your Bolly Brunch. So उम्मीद करते हैं इन गानों को, हमारी बातों को आपने पसंद किया, आपने enjoy किया अपना time इन प्यारे गानों के साथ. और जैसे हमने कहा कि weekend तो होता ही है enjoy करने के लिए, so do make the most of it. जिंदगी मिलती है एक बार और इसे हम जीते हैं every day. Yes, 24 fresh hours जो आपको मिले हैं, do make it special and make every moment count. और थोड़ी ही देर में आपको लेकर चलेंगे शौंदे मास फॉर योर रेसेस एज वेल. सो ये आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है राइट हियर ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती. अभी के लिए इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए हमारा साथ दीजिए ऑन रेडियो मस्ती एंड हैव अ वंडरफुल सैटरडे. हैव अ वंडरफुल वीकेंड.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती,
1: वेलकम टू RM2।
2: रेडियो मस्ती,
3: नॉर्थ साउथ
4: 103.5,
3: ईस्ट वेस्ट
4: 96.4,
3: सेंटर
4: 99.4।
1: RM2, Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: Good afternoon, aap sabhi ko check the time. It's already 1 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ। आपको नमस्कार याचना।
5: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। ब्रेस्ट कैंसर केयर एसोसिएशन ने शनिवार को फ्लैग के भुइनो चोंग अस्पताल में अपना छठा केंद्र शुरू कर रहा है। इसका नाम जेराल्डिन टुसें ब्रेस्ट कैंसर केयर सेंटर रखा गया है। ये केंद्र जेराल्डिन टुसें को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है, जिनका निधन ब्रेस्ट कैंसर के कारण हुआ था। इस नए केंद्र में कई तरह की सहायता सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें हर सप्ताह सामान्य चिकित्सक से परामर्श, मनोवैज्ञानिक का सहायता और मरीजों के लिए विग उपलब्ध कराना शामिल है। कैबिनेट ने एजुकेशन कंट्रोल एंड यूज ऑफ पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस ऑन स्कूल प्रेमिसेस रेगुलेशंस 2026 को मंजूरी दी है। नए नियमों के तहत विद्यार्थियों को स्कूल परिसर में निजी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। मोबाइल साथ लाया जा सकेगा, लेकिन उसे साइलेंट मोड पे रखकर सुरक्षित रखना होगा। केवल स्वास्थ्य संबंधी जरूरत होने पर या शिक्षक की अनुमति के साथ पढ़ाई के लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकेगा। शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को भी विद्यार्थियों की मौजूदगी में निजी मोबाइल फोन का उपयोग करने से बचना होगा, सिवाय आधिकारिक यानी औपचारिक या शैक्षिक कार्यों के लिए। बार बार नियम तोड़ने पर अभिभावकों को सूचित किया जाएगा और जब्त किया गया मोबाइल वापस लेने के लिए उन्हें स्कूल आना पड़ेगा। विदेशी समाचारों में, जब से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म हो चुका है, तब से अमरीका ने लगातार सातवें दिन ईरान पर घातक हमले किए। ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, खासकर ऊर्जा और पानी के डिस्टिलेशन प्लांट्स को। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार।
4: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
5: Chok samachar sunye, Concoral, Rivière des Créoles, mais Concoral, Rivière des Créoles, mais. 55 साल के 55 years old के श्री सुनील तुलसिया जो सुपब के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2:30 बजे उनके मकान कोंकोहाल रिविया डी क्रियोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि तोंबो में पर शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। पेटी पाके मोंटाय ब्लांश में 68 साल के 68 years old के जनाब बाई इस्लाम बहादुर जो इस्लाम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दोपहर 2:30 बजे उनके मकान पेटी पाके मोंटाय ब्लांश से उठाकर दफनाने के लिए मोंटाय ब्लांश का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: RM2 Radio Musti.
6: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services. TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others. TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.

0: Story Brunch RM2 Radio Masti.
1: Right to continue with the Bali Brunch. Special thank you to our lovely Peri jo yahan par thi subah se and together super dose of music jab hum le rahe the apne brunch ko. So really hope you had a great one. और कई तो ब्रेकफास्ट के बाद अभी लंच ले रही है. सो आई विश यू ऑल बन अपेची आप सभी को. ट्यून इन फॉर द बेस्ट ऑफ म्यूजिक राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती. यहाँ पर हम लेकर आएंगे ओनली द बेस्ट ऑफ म्यूजिक ऑफ कोर्स टू एंटरटेन यू. सो क्या हालचाल, इट्स सैटरडे. यहाँ पर काफ़ी चहल पहल है और कई लोग तो बस जा रहे हैं अपने सैटरडे के कामकाज करने के लिए. Maybe going some for some shoppings. Bazaar aap ja rahe ho ya fir kiske saath bahar, maybe an outing. Saturday ka jo mausam hai bilkul awesome hai aur suhana mausam hai. It's like an awesome day, a wonderful safar ke saath bilkul aap jud gaye ho. To yakeenan hum lekar aayenge kuch dilchasp gaane jo aapko pasand aayenge. Really hope you will enjoy the collection for Bali Brunch up till 2 PM aur iske baad shuruaat hogi for another musical journey that will be plug and play. So we are all set. Yahan pe RJ Hansani bilkul ready hai to be part of the musical journey jo aapke saath hum bitane wale hain taki hum sab bane on Radio Masti hum safar. And to celebrate Saturday, aaj to hai 18 July and bilkul hamare kai friends aaj apne special din mana rahi hain. So milkar hum dhoomdham se manayenge janmdin ko, milkar aapke khas occasion ko dhoomdham se manayenge. So anyhow, yahan pe connection ban jayega on a 5 9 12 94 for your messages and dedications. So yahan par jo energy hai subah se in Bali Brunch bus unko jari rakhti hai. Aap sabhi ka welcome once again.
0: Bali Brunch RM2 Radio Masti.

0: Bali Brunch RM2 Radio Masti.
1: तो बाली ब्रंच में ऑफ कोर्स शेयरिंग सम क्यूट बातें आपके साथ भाई. बचपन के जो दिन भी क्या दिन थे, न किसी बात की चिंता ना कोई जिम्मेदारी. हाँ बिल्कुल, क्या दिन थे. दैट हम तो कहेंगे दैट वाज

0: ने द बेस्ट चाइल्डहुड डेज. सुबह उठते ही बस दोस्तों के साथ खेलने निकल जाते थे, और जब बारिश होती थी तो बारिश में भीगना और कागज़ की नाव बनाकर बहाना ये सब होता था ना. और टिफिन में जो भी मम्मा बस डालती थी सब मिलकर बांटकर खाते थे. उस समय दोस्ती में कोई स्वाद नहीं था. और बिल्कुल नानी के यहाँ जाते थे जब ऐसे स्कूल हॉलीडेज मिलते थे, तो नानी के घर, दादी के घर हम जाते थे, और एकदम कैफी होके हम अपने कजिन्स के साथ इतनी मस्ती करते थे कि अभी भी जब याद करती हैं तो इट्स लाइक स्वीटेस्ट मेमोरीज, राइट. सो बचपन के यार जो हम बस कभी नहीं भूलेंगे, ये तो चाइल्डहुड वाली जैसे वनियर्स है, बिल्कुल याद आ गए हैं बचपन का प्यार जता आपके लिए. अ बिग हेलो टू ऑल माय किडोस. हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? वेरी हैप्पी ना रिजल्ट्स पाने के बाद? स्कूल हॉलीडेज ऑलरेडी ऑन? यस, कल से हॉलीडेज शुरू हो गई है. छुट्टियों के जो हफ्ते आने वाले हैं, क्या दिन भी आएंगे और घर पर रहेंगे, तो मम्मी पापा को ज़्यादा सताना मत. बी गुड किड्स एंड ऑफ कोर्स पढ़ाई को जारी आप लोग को रखना है. कई जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो तो ट्यूशन से लेने वाले हैं, सो स्टिल जो है पढ़ाई, ये सब जो है आपको कायम रखना है, जस्ट कैरी ऑन. लेकिन हाँ, एक छोटा सा वक्त आपको भी निकालना है. स्कूल हॉलीडेज है भाई, थोड़ी सी मस्ती तो बनती है ना? बनती है डेफिनेटली. सी रेडियो मस्ती आप लोगों का साथ बस देता रहेगा, ऑलवेज एंड फॉरएवर. ये तो है बॉलीब्रंच, शेयरिंग सम क्यूट बातें आपके साथ. आप भी कुछ बात कर लीजिए, हम तो नॉनस्टॉप बातें कर लेते हैं. हम सुनी है ना आपके साथ अंटिल 4 PM. आज मुलाकात बिल्कुल रंगीन होने वाली है. सो विल बी हियरिंग फॉर यू यहाँ पर ऑन 5 99 12 94 फॉर योर मैसेजेस एंड डेडिकेशंस.
1: Body Branch RM2 Radio Masti.
0: और यहाँ पर ये जो शादी वाला गाना है, शादी वाला फील, हम डेडिकेट करना चाहेंगे हमारी RJ रिया के लिए. ऐसे कल उनकी शादी हुई अपने जीवन साथी यशविंद के साथ. से रिया एंड यशविंद की बहुत सारी बधाइयाँ हैं पूरे टीम की तरफ से. यारी से शुरू हुई ये कहानी और शादी हुई धूमधाम से कल. मेरी कंग्रेचुलेशंस टू बोथ कमिंग फ्रॉम ऑल द RJs, ऑल आवर टीम. वी डू विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी मैरिड लाइफ.

0: Enjoy Brunch RM2 Radio Masti.
1: That was fun. That was Bhangra Feel on Radio Masti. यहाँ पर थोड़ा सा पंजाबी डांस तो हो ही गया in the studio. लेकिन ड्राइव करते समय नो डांस, सिर्फ ड्राइव पर कंसंट्रेट आपको करना है, राइट? लेकिन घर पर पहुंचते ही यू कैन डांस, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे म्यूजिक को सुनना, इसमें कोई पाबंदी नहीं है. लेकिन ड्राइव करते समय मेंटेन द फोकस एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग. तो यहाँ पर हालचाल कैसा है? रियली होप यू एंजॉयिंग द सिलेक्शंस. अभी शुरुआत हुई है, अभी हम जारी रखेंगे द बॉडी ब्रंच मूड. और इशारा भी तो है, यहाँ पे घोड़े जो है बिल्कुल रेडी हो रही हैं फॉर द नेक्स्ट रेस. दैट विल बी अराउंड 13:40 PM. तो यहाँ पर साथ निभाने के लिए हंसनी है आपके साथ एंड मैसेजेस आ रहे हैं भरपूर. थैंक यू वेरी मच फॉर इंटरेक्शन आपके मैसेजेस के लिए. गुड आफ्टरनून हंसनी, गुड आफ्टरनून टू ऋषि, ऋषि विदेशी जो यहाँ पर आए हैं. और यहाँ पर गाना है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो स्कूल हॉलीडेज में बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं एंड मोदी गर्लफ्रेंड के लिए. अच्छा, लेकिन गाने को सुनकर जो मोदी गर्लफ्रेंड है वो तो बिल्कुल हंसमुख हो जाएगी, यकीन मानिए. यहाँ पर गाना है आपके गुड फ्रेंड बर्थडे गर्ल है जो सेलिब्रेट करने वाली है अपनी सालगिरह ऑन 22nd of July. सो विश हर इन एडवांस अ वेरी हैप्पी बर्थडे. इसके बाद चलते हैं फ्लैग. यहाँ पर जाना का साथ है. चलिए, काम से आई हो घर वापस और रेडियो मस्ती के साथ आप जुड़ गए हो. यहाँ पर गाना एकदम मदमस्त हो जाए आपके लिए एंड फॉर रीमा जो आपकी बेटी है, साथ में जनीता, शिस्त, अंशनी, सेल्विया, यूवी, कृषि और सभी शिवसरन परिवार जो फ्लैग से है जॉइन द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती. हेलो टू सूरज भाई, प्रणाम टू यू. है हर महादेव, आप तो आई हो ऑल द वे फ्रॉम थ्रियोली. यहाँ पर साथ जारी है एंजॉइंग द नाइस कलेक्शन ऑफ म्यूजिक एंड या आपने कहा है कि जो मॉन्ग दुफिनी है इट्स लाइक ऑन फ्लोर इन थ्रियोली, यानी कि घर के बाजू में ही है. तो आएंगे टोकरी लेकर जब ये सब रेडी हो जाएंगे, राइट सूरज भाई? यहाँ पर गाना एकदम आपके लिए जरूर चल जाएगा, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त टू मेक इट अ वंडरफुल जर्नी आपके साथ. दिस इज आवर बॉडी ब्रंच अप टिल 2 PM.
0: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती.

0: Story Brunch RM2 Radio Masti.
1: Of course, यहाँ पर म्यूजिक का जो जादू है वो तो चल ही गया कब से, इसलिए आप जुड़े हुए हो ना still going strong. With Boy Brunch, we have got energy, we have got good vibes, और यहाँ पर जितने भी हमारे listeners जुड़े हुए हैं, of course, getting some great energy around. So यहाँ पर जो musical journey है उनको बस जारी हम रखेंगे with आपके messages now. प्यार से जहाँ पे आपने कुछ लिखा है सो प्यार से ही पढ़ेंगे. हाय, मैं हूँ आरुष और मामा जो है ड्राइव कर रही है फ्रॉम लेमोंड वाइल लिसनिंग टू द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. हे आरुष, वेलकम इन द शो. और मामा के लिए भी लॉट्स ऑफ लव है फ्रॉम ऑल आवर टीम. वैसे यू हैव अ रिक्वेस्ट इन द फीमेल वर्जन, जो गाना आपने भेजा है ये तो हम कोशिश करेंगे टू प्ले, अगर नहीं तो कमिंग गाना बेशक आपके लिए मामा के लिए चल जाएगा. सो वी हैड अ ग्रेट लंच, बहुत ही अच्छा सा खाना हुआ है आज लंच, जहाँ पर आपने बनाया था होम मेड बिरयानी और आप बीच पर गए टू हैव योर लंच. दैट्स ग्रेट. एंड लंच जो है बहुत ही लजीज रहा आई एम श्योर. और साथ में यू सॉ द स्मॉलेस्ट चर्च ऑन मॉरिशस फॉलोड बाय ब्लैक रिवर गॉज नेशनल पार्क. इतने अच्छे अच्छे सुवेनियर्स, ब्यूटीफुल मॉरिशस, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. थैंक यू आरिश. ये तो है यहाँ पर आपका प्यार, आपकी अप्रिसिएशन जो इस शो को और भी रंगीन बना रहा है. थैंक यू वेरी मच आपके इस प्यार के लिए. तो कमिंग गाना बेशक चल जाएगा आपके लिए, फॉर योर मामा के लिए एंड फॉर ऑल आवर लिसनर्स जो यहाँ पर इस सैटरडे को बस एंजॉय करते हुए कनेक्टेड है ऑन रेडियो मस्ती.
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती.

0: news and the greatest mix of music. Feel the musty.
1: Good afternoon to you all. I check your time. It's the 2 p.m. संदेह संक्षिप्त समाचार याचना के साथ आपका नमस्कार याचना
2: नमस्कार हंसी सभी सुनने वालों को नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार देश में ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत बनाने की दिशा में आज सुबह डॉक्टर भुइनो चोंग स्वास्थ्य केंद्र में जेराल्डिन टूसें ब्रेस्ट कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया इस केंद्र में स्क्रीनिंग से लेकर मानसिक और शारीरिक सहयोग प्रदान करने तक सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी ये केंद्र उस महिला के नाम से जाना जाएगा जिसने ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ संघर्ष करके कई अन्य महिलाओं को प्रेरित किया है ब्रसल्स के दौरे पर गए विदेश मंत्री रितेश रामफल ने गुरुवार को यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोश सेवकोविक से मुलाकात की दोनों नेताओं ने अगले वर्ष यूरोप मॉरिशस बिजनेस फोरम आयोजित करने पर सहमति जताई ताकि आर्थिक सहयोग और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके कल फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले रविवार की सुबह 1 बजे तीसरे स्थान के लिए मैच होगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मायामी के स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा इसके बाद कल रात 11 बजे वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था फाइनल होगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच इसका प्रसारण एमबीसी 11 और एमबीसी प्ले पर किया जाएगा विदेश खबरों में जब से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म हो चुका है तब से अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान पर घातक हमले किए ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है खासकर ऊर्जा और पानी के डिस्टिलेशन प्लांट्स को इस बीच खाड़ी देशों के हवाई क्षेत्र से गुजर रही मिसाइलों को निष्क्रिय किया जा रहा है जॉर्डन और बहरीन ने ऐलान किया कि ईरानी मिसाइलें उन्होंने गिराई हैं ये थे अब तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: शोक समाचार सुनिए रेलवे रोड कच्ची मिलितिया में रेलवे रोड कच्ची मिलितिया में 55 साल के 55 years old के श्री विक्रम सिंह रामदिकुल श्री विक्रम सिंह रामदिकुल जो रोशन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान रेलवे रोड कचिमरितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास्क की शमशान भूमि ली जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM कोंकारोल रिविया दे क्रेओल में 55 साल के 55 years old के श्री सुनील तुलसिया जो सुपुप के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके मकान कोंकारोल रिविया दे क्रेओल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो मेबर्ग की शमशान भूमि ली जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM Petit Paquet Montagne Blanche में 68 साल के 68 years old के जनाब बाई इस्लाम बहादुर जो इस्लाम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं जनाजा आज दोपहर 2:30 बजे उनके मकान Petit Paquet Montagne Blanche से उठाकर दफनाने के लिए इलाके का कब्रस्तान ले जाया जाएगा फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है
3: RM2 Radio Musti Plug and play
0: RM2
3: Plug and play

0: Plug and play.
1: RM2.
2: Welcome again on the Radio Musty. This is our Plug and Play, and yakin na jo खासा गाने हैं हम लेकर आएंगे टू एंटरटेन यू. यहाँ पे एंटरटेनमेंट का ये स्पेशल डोज तो चलने ही वाला है, एंड शुरुआत हो गई है फॉर आज का प्लग एंड प्ले. विल बी ब्रिंगिंग सम ग्रेटर सॉन्ग्स, और इसी उम्मीद के साथ कि आप पसंद करेंगे हमारे इस कलेक्शन को. और ये तो मुलाकात रहेगी अप टिल 4 PM. यहाँ पर है आज हम सनी, सबका हम स्वागत करेंगे. विशिंग यू ऑल अ ग्रेट आफ्टरनून. सैटरडे वाला ये दिन जो आया है, एंड टू मेक इट फन लविंग बनाने के लिए, एंड आप का साथ जारी है और आप साथे बने हुए हो और आपकी दोस्ती भी जारी है. और हम तो मानते हैं कि दोस्ती एक ऐसा सफ़र है जिसमें हंसी भी होती है, यादें भी होती है और ज़िंदगी भर का साथ भी होता है. तो यहाँ पर दीजिए हमारा साथ अप टिल 4 PM. कुछ कहना चाहेंगे इन प्लग एंड प्ले, व्हाई नॉट. कीप शेयरिंग योर वाइब्स, कीप शेयरिंग योर मैसेजेस. हंसी खुशी मनाने का ये दिन आया है, और आजकल तो इट्स लाइक वेडिंग सीजन. सर शादियाँ हो रही है धूमधाम से, सगाई या फिर कोई भी हो खास ओकेजन. आज आपका बर्थडे है, सेलिब्रेटिंग 18th of July. हैप्पी बर्थडे के ढेर सारे गुड विशेस है, और हमें तो चाहिए वो एक बहाना टू मेक इट फन, ज़्यादा मस्ती करने के लिए, कुछ धमाल करने के लिए. आफ्टर ऑल ये जो कनेक्शन कुछ ऐसा ही है, म्यूजिकल है. जहाँ पर भी आप होते हो वहाँ पर हम चले आते हैं. सो वी आर हियर टू हैव योर मैसेजेस. कुछ आप कहना चाहेंगे तो आपका इंतजार रहेगा 5499-1294 पर. दिस इज अ ब्यूटीफुल शो जो सेट होने वाला है अटिल 4 PM.
0: प्लग एंड प्ले
1: RM2.
0: प्लग एंड प्ले.

0: वायरल हो गई। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सिगरेट को छोड़िए, लेकिन मोबाइल फोन ही कैसे अंदर गया जब इनकी अनुमति ही नहीं थी। देश में ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत बनाने की दिशा में आज सुबह डॉक्टर ब्रूनो चोंग स्वास्थ्य केंद्र में शिगालजिन टूसे ब्रेस्ट कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र में स्क्रीनिंग से लेकर मानसिक और शारीरिक सहयोग प्रदान करने तक सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी। ये केंद्र उस महिला के नाम से जाना जाएगा जिसने ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ संघर्ष करके अन्य महिलाओं को प्रेरित किया है। संयुक्त राष्ट्र में मॉरिशस ने वैश्विक आवास संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। मंत्री शकील मोहम्मद ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया, जहां न्यू अर्बन एजेंडा के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का आकलन किया गया। शकील मोहम्मद ने आवास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के लिए सरकार द्वारा पहले से उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया। वैश्विक स्तर पर कल फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले रविवार की सुबह 1 बजे तीसरे स्थान के लिए मैच होगा। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मायामी के स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा, जहां इंग्लैंड और फ्रांस की टीमें आपस में टकराएंगी तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए। इसके बाद कल रात 11 बजे वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, फाइनल होगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: क्या बात है यहाँ पर यार दिलदार है तो बहुत ही सोना है ऐसे क्यूट बातें तो हम कर लेते हैं आपके साथ और आपके साथ बिताया हर पल हम तो कहेंगे जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बनकर रह जाती हैं और प्यार की बात करें तो प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि हर पल एक दूसरे की खुशी की परवाह करने का एहसास है सो वी कंटिन्यू विद लव एंड केयर जो गुड वाइब्स है जो प्यारी बातें हैं जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं उनको बस आगे हम बढ़ाते हैं वी आर ऑलरेडी इन द सेकंड आवर ऑफ अ प्लग एंड प्ले थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स यहाँ पर इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे कि आपको ये जो शो है आपको अच्छा लग रहा है शेयरिंग सम ऑफ योर प्यारी बातें कभी ऐसा होता है कि हम चुप रहना चाहते हैं ऐसा होता है आपके साथ मेरे साथ रेयरली होता है क्योंकि मैं तो हर वक्त नॉन स्टॉप बातें कर लेती हूँ लेकिन या समटाइम्स वी डू नीड अ ब्रेक हमारा मी टाइम होना ज़रूरी है लेकिन अभी नो मी टाइम अभी इट्स आवर हम टाइम हम और आप जुड़ रही हैं एक दूसरे से कुछ बातें शेयर कर रही है कनेक्शन तो बन गया है जी अटल फोर पीएम दिस इज आवर प्लग एंड प्ले शेयरिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294
0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: And typically I'll take you in the magical 90s. Ek aisi yaad ho jaye. और ये हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर ऑल द 90s फॉलोअर्स के लिए जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं शुरुआत से. पहले वी हैड अ बॉली ब्रंच, इसके बाद आया प्लग एंड प्ले. तो ऐसे में वी आर हियर टू रिक्रिएट द मैजिक ऑल अराउंड, जहाँ पर भी साथ जारी है. हंसनी है जो आपके साथ है. कुछ 90s की बातें हो जाए आपके साथ, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए स्पेशली.

धीरे धीरे दिल ने तुम्हें अपना बना लिया, धड़कन ने तुम्हारा नाम सजा लिया है। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वक्त बदलता गया और तुम्हारे लिए मेरा प्यार गहराता गया। धीरे धीरे मुस्कुराने की वजह बन गई, अनजाने में ही तुम मेरी दुनिया बन गए। थैंक यू ऋषभ जी, दैट वॉज फैंटेबुलस। और एकदम रोमांटिक मोड में हो, क्या बात है। यहाँ पर गाना एकदम बिंदास था, 90s वाला तड़का था, एंड यू रियली एंजॉयड। थैंक यू फॉर योर स्वीट वर्ड्स, थैंक यू फॉर लविंग द शो। ये था आज का प्लग एंड प्ले, था नहीं बल्कि है, अभी तो जारी है ये सफ़र अप टिल 4 PM। लेकिन यहाँ पर इशारा है कि कुछ पल में हम बढ़ने वाले हैं शादो मॉस्पोर्ट रेस, जहाँ पे लगने वाला है द नेक्स्ट रेस। सो फॉर द अपडेट्स ऐसे ही आप सुनते रहिए।

0: East or West, tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
1: हमें तो पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था.
2: मुझे भी तो तुम दोनों से पहली नजर में प्यार हो गया था. I said, what gorgeous sexy men. साथ में गुंडे, मगर ख्वाब बड़े बड़े.
3: कयामत कयामत कयामत.

0: track and play.
1: RM2.
2: Kayamata gana ke baad ab time for some dedications on the 549-1294. वैसे कुछ लोग किस्मत से मिलते हैं ना और कुछ यार बनकर जिंदगी को खास बना देते हैं सो इसी यारी में आपके मैसेजेस हो जाए यहाँ पर विस्ट आउट हाय हंसनी हेलो कैसे हो मैं तो ठीक हूँ गुड आफ्टरनून टू एवरीवन लिसनिंग यहाँ पर गाना फॉर पमेला के लिए फॉर प्रियंका वी हाय बृष्टि जो अब्रॉड है शी इज इन जर्मनी पढ़ाई के लिए गई है सो कुराज एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू दृष्टि वी मिस हर वेरी मच ये तो है और प्यार है फॉर प्रिंस अवी के लिए फ्रॉम मिस्टर कृष्ण स्वामी जो टयाक से कनेक्टेड है टू रेडियो मस्ती तो आपका भी स्वागत है सुरीनाम से यलेश बेटा कैसे हो गुड आफ्टरनून टू यू शाम परिवार के लिए गाना एंड स्पेशल हाय टू भाई अंतिश राम सरन या ही इज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड राइट नाउ सो एक गाना ऑन योर बिहाफ टू हिम एंड ये जो यारी है ये जो दोस्ती है उनको बस कायम हम रखेंगे A big hello to Arun, wishing all the officers jo aapke saath hai, wishing everyone a great afternoon. Aap to police station mein kaam kar rahi hai, and really having a great time. Music ka saath hai, and kaam mein thoda sa stress level kam ho gaya hai. That's nice. So lage raho ji, bon courage aapko, aur night shift ke liye aapko double courage. Thank you for listening. Yahan par we have the message coming from... Divya and Nandini. Okay, two besties जो जा रहे हैं घर वापस आज गए थे for a drive, गए थे for some shoppings, खाना खाने के लिए गए थे Like girls day out, ये तो अच्छी बात है ये जरूरी है यहाँ पर long live your friendship. So एक special गाना please हम दोनों के लिए हो जाए वैसे हम दोनों की शादी next year होने वाली है Looking forward for our big day. So इसी related आप गई हुई थी for some shoppings, ये तो अच्छी बात है girls लगे

0: एंड ऐसे ही हसमुख आप रहे दोनों बेस्टीज जो है आप दोनों, ऐसे ही जो आपकी फ्रेंडशिप है, जो आपकी दोस्ती है वो और भी गहरी होती जाए. We have the message coming from Anish. Hello to you. Still at work. As always, jo hard work hai, wo bas jari hai. And hello to all your SMF officers jo aapke saath kaam kar rahe hain aaj. Sabko aasha un sabhi ko. Thank you for listening. Yahan par ye jo musical show hai wo to bas hum jari rakhenge until 4 p.m. Aur jo Hansani hai aapke saath, wishing everyone a pleasant afternoon.
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: plug and play.
1: RM2.
2: Well, just imagine कि यहाँ पर ये गाना तो चल ही रहा था और अचानक से आपका जो रंजना है, आपका जो साजना है, वो आपके सामने आ जाए. ये तो एकदम बॉलीवुड वाला सीन हो जाएगा ना. थैंक्स टू रेडियो मस्ती जो हमेशा यहाँ पर साथ होता है टू मेक इट मैजिकल और एकदम यादगार बनाने के लिए. सो मिसिंग योर रंजना, मिसिंग योर साजना. बेबी आप दूर हो इस समय उनसे, तो कोई बात नहीं. यहाँ पर दिल से हम यही प्रार्थनाएं करेंगे कि जो भी चला गया है, अगर आपका प्यार सच्चा है ना, दिल से आपने उनको चाहा है, दिल से आपने पूरे रिश्ते को निभाया है, तो वो लौट कर आए आपके पास, क्योंकि उनके बिना तो जिंदगी एकदम अधूरी सी लगती है ना. अगर हो सके तो एक बार फिर लौट कर वो आ जाए. कुछ रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें भुलाया तो नहीं जा सकता. वापस आ जाए बहुत याद आते हैं, हर दिन उनकी कमी महसूस होती है. काश वो फिर से जिंदगी का हिस्सा बन जाए. दूरियां चाहे जितने भी बढ़ जाए ना, दिल की चाहत आज भी वही है, वो वापस आ जाए बस लौट कर. तो ये है स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल दोस जो अभी अपने प्यारे के एकदम दूर है. लेकिन पता है क्या बात है, जो रेडियो मस्ती है ना, वो दूरियों को बस मिटा देती है. वी डू ब्रिंग यू क्लोजर और जो प्यार है वो एक बार फिर से उनको हम कायम रखते हैं और फिर से जो सिलसिला है प्यार का, वो बस उनको जारी हम रखते हैं. दिस इज आवर प्लग एंड प्ले, ब्रिंगिंग सम लव फीलिंग्स अराउंड, शेयरिंग सम गुड वाइब्स जहां पर भी साथ जारी है. एंड आई हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल वन. मुझे यकीन है कि जितने भी हमारे दीवानी है साथ दे रही है, वो बस इस गाने को बहुत पसंद करने वाली है. सो लेट अस गो एंड चेक आउट, इट्स फ्रॉम द मूवी, हाँ वो ही है, मेरे जीवन साथी.

जबकि यहाँ पर जो माहौल है वो कुछ रोमांटिक सा हो गया है, सो हमने सोचा लेट्स ब्रिंग इट, वी हैव इट फॉर ऑल द 90s के फैंस वंस अगेन इन प्लग एंड प्ले, तो मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, वो है ना उनका प्यार है तो और क्या चाहिए, टू मेक इट ब्यूटिफुल, टू मेक इट ऑसम। तो यहाँ पर जाने का टाइम आ गया है, अर्ली होप कि जो आज का सफ़र था बस आपने पसंद किया है। अभी 4 बजे सुनेंगे समाचार और इसके बाद आएगी दिव्या लेकर आज का बॉलीवुड टक टक। मिलेंगे कल, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैव

0: 4:53 हुए हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ। आपको नमस्कार याचना।
1: नमस्कार, हम सुनिए, सुनने वालों को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार सुनिए। कुछ कैदियों को फिल्माया गया जब वे सिगरेट जैसा दिखने वाला कुछ बना रहे थे। एक मोबाइल फोन के जरिए बोबासा की जेल के दीवारों के पीछे ये दृश्य कैद किए गए। ऐसी वीडियो जो जल्द ही वायरल हो गई, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। सिगरेट को छोड़िए बल्कि मोबाइल फोन ही कैसे अंदर गया जब इसकी अनुमति जेल के भीतर नहीं है। देश में ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत बनाने की दिशा में आज सुबह डॉक्टर ब्रूनो चोंग स्वास्थ्य केंद्र में जेराल्डिन टूसेंट ब्रेस्ट कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र में स्क्रीनिंग से लेकर मानसिक और शारीरिक सहयोग प्रदान करने तक सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी। ये केंद्र उन महिला के नाम से जाना जाएगा जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ संघर्ष करके कई अन्य महिलाओं को प्रेरित किया है। कल फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले रविवार सुबह 1 बजे तीसरे स्थान के लिए मैच होगा। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मायामी के स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। इसके बाद कल रात 11 बजे वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, फाइनल होगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच। इसका प्रसारण MBC 11 और MBC Play पर किया जाएगा। विदेश में जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म हो चुका है, तब से अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान पर घातक हमले किए। ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, खासकर ऊर्जा और पानी के डिस्टिलेशन प्लांट्स को। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: RM2, Radio Masti.
4: Music, Tak Takata.
5: RM2, Radio Masti.

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
0: म्यूजिक टकटकाता RM

0: रेडियो मस्ती।
1: ऑलराइट, शाम के 4:11 हो चुके हैं। सैया मेरा ऐरा गैरा नथु खैरा, क्या बात है। और चलिए, जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच। वैसे आप लोग शायद शिकायत कर ही रहे होंगे सैया जी के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि लेजी लैड सैया लुक कर लो बात। चलिए, जितने भी सारे हमारे जो जेंटलमैन हैं सुन रहे हैं, आज वीकेंड है तो प्लीज़ अपनी पत्नियों का हाथ ज़रूर बटाना, वरना आपको पीछे से कंप्लेन ही मिलने वाली है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि यू हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम एंड इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल सैटरडे आफ्टरनून। एंड चलिए, कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट, दिव्या का साथ है अभी से लेकर टिल 6 PM। एंड ऐसे ही आपका साथ हम देते रहेंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। एंड ऑफ कोर्स ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि हम आपके मैसेजेस को मिस करें। तो चलिए, आपके मैसेजेस का हम इंतजार करेंगे ऑन 5499 1294।
2: म्यूजिक टक टक आता
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: चलिए इस बार आए हैं तो बिल्कुल आपको तो पता है ही कि हमेशा आपके लिए हम गिफ्ट लेकर आते हैं और वी आर प्लेइंग विद कॉन्सर्ट अभिजीत। अगर आपकी जीत होती है तो यू विल स्टैंड अ चांस टू विन वन टिकट टू द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट जो होने वाला है सैटरडे 25 जुलाई 2026 को एज फ्रॉम 7:30 PM एट SBICC Pi। तो आपको सिंपली हमें बताना है कि अभी अभी जो गाना आपने सुना तेरे प्यार में, यू हैव टू टेल मी कि इस गाने के अंदर कौन सी एक्ट्रेस और कौन सा एक्टर पिक्चराइज हुए थे। यू हैव टू टेल मी ये जो गाना अभी अभी आपने सुना तेरे प्यार में हाँ गला थोड़ा खराब है आज के लिए, आप मुझे इस गंदे आवाज़ के लिए माफ़ कर दीजिएगा। चलिए अभी के लिए तो आपको हमें बताना है कि ये जो गाना आपने सुना तेरे प्यार में, इसमें कौन सा एक्टर और कौन सी एक्ट्रेस पिक्चराइज हुए थे। वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स ऑन 5499 1294। एंड आपको हम बता देते हैं कि आपको हमारे साथ तभी खेलना है अगर आप अपना गिफ्ट वाउचर कलेक्ट करने आ पाएंगे एट द MBC। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू सेंड ऑल योर राइट आंसर विद योर फुल नेम एंड योर फुल एड्रेस।
0: Music, Dr. Gutter.
1: RM2, Radio Musty.

0: ऑलराइट, चलिए यहाँ पर आफ्टर सो मेनी नाम यहाँ पर जो आपने भेजे हैं, इसका लकी ड्रॉ करने के बाद वी हैड अ वेरी टफ टाइम चूजिंग कि हमारा लकी विनर कौन होगा. एंड चलिए यहाँ पर बहुत बहुत सारे लोगों ने खेला हमारे साथ, थैंक यू सो मच. वैसे हमने सवाल किया था, हमने गाना एक चलाया था फ्रॉम द मूवी जोर, तेरे प्यार में. यस, यू हैड टू टेल मी कि इस गाने के अंदर कौन सा एक्टर और कौन से एक्ट्रेस पिक्चराइज हुए थे. द राइट आंसर इज सनी देओल एंड सुष्मिता सेन. यस, सो इजी. एंड यहां पर काफी लोगों ने सही जवाब दिए, बट लकी ड्रॉ करने के बाद हमारा लकी विनर है शहजाद कुनाय. आप हैं गौन खुदखैत से, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू. एंड आपको मिल रहा है क्या, ऑफकोर्स यू आर गेटिंग वन एंट्री टिकट to the golden 90s era tour featuring Abhijit Bhattacharya live in concert on Saturday jo hoga on 25th July 2026 as from 7:30 PM at SVICC Pai. Aur aapko mauka mil raha hai to step into a world of nostalgia and relive the unforgettable voice that defined Bollywood's golden era. Aur साथ में आपको ये भी मौका मिल रहा है टू एंजॉय एन इवनिंग ऑफ टाइमलेस मेलोडीज, लेजेंडरी हिट्स एंड प्योर म्यूजिकल मैजिक. सो डोंट मिस दिस अनफॉरगेटेबल कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस. और आपको हम बता देते हैं दैट टिकट्स स्टार्ट एज फ्रॉम 850 rupees एंड और अवेलेबल एट moticket.mu एंड रिजो उतायो. रिजर्वेशन के लिए आप हॉटलाइन को भी फोन कर सकते हैं, विच इज 5669999 5669999. वंस अगेन शहजाद आपको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड जस्ट टू लेट यू नो दैट आपको खुद एमबीसी आकर अपना जो गिफ्ट वाउचर है, जो एंट्री टिकट है, वो कलेक्ट करना है. आपको आना है ड्यूरिंग वीक डेज मंडे टू फ्राइडे. आपके पास टाइम है सुबह के 9 बजे से लेकर पहर के 3 बजे के बीच आप आ सकते हैं. एंड यू कैन कम एंड कलेक्ट योर गिफ्ट वाउचर. सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस. एंड ये अगला गाना गुजार स्पेशली आपके नाम.
1: म्यूजिक टक टक आता
2: आरएम2 रेडियो मस्ती.

वेल प्लेयर्स मूवी से लिया गया ब्यूटीफुल सा ये गाना. दिल ये बेकरार क्यों है, ये सवाल का जवाब बस आपके पास ही है, क्योंकि दिल को पता होगा कि ये दिल बेकरार क्यों हो रहा है. मे बी शायद आपको प्यार हो गया है. वेल 5:11 हो चुके हैं. एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती एंड इट्स योर म्यूजिक टक टकाटक जहां पर दिव्या का साथ है टिल 6 PM. सो स्टे राइट कनेक्टेड.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: Well, it was a beautiful gana and हमने आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया ये गाना. एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल चुके हैं या फिर आप घर पर आराम कर रहे हैं तो ये गाना सुनने के बाद आई एम श्योर कि आपके दिमाग में आपके जहन में यही बात आई होगी कि हे लॉन्ग टाइम. तो चलिए कुछ ऐसे भी गाने होते हैं ना जिनको हम सुनते ही बहुत ऐसे हज़ारों यादें हमारे सामने आ जाती हैं. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक गीत के साथ एक ना एक मेमोरी या फिर एक ना एक खूबसूरत फीलिंग जुड़ा होता है. तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं आपके कुछ और खूबसूरत मैसेजेस की ओर. ललिता जीतन एंजॉइंग द शो एट होम एंड फुल वॉल्यूम में आप जॉगिंग भी कर रही है. ये जॉगिंग घर पे आप कैसे करते हैं ललिता जी आप मुझे ज़रूर बताइएगा. एंड नेक्स्ट गाना गुजार फॉर जीतन फैमिली ऑफ लावांचिया. थैंक यू सो मच ललिता जी इतने प्यार से हमारा साथ देने के लिए. एंड साथ में यहाँ पर अगला गाना गुजार फॉर दार एंड श्वेता रवीश प्रीशा लवशान आपादू फैमिली ऑफ होशनुआ. थैंक यू सो मच हमेशा आपका मैसेज हम तक पहुंच ही जाता है कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ. हम आगे बढ़ते रहेंगे. एंड डोंट फॉरगेट इट्स योर म्यूजिक टकटकाटक टिल 6.
0: Music, Tak Tak Tak.
1: RM2, Radio Musti.

0: fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments. Music Taktakata.
1: RM2 Radio Masti.
2: चलिए एवरी सैटरडे हम लेकर आते हैं एक फैशन टिप्स आप लोगों के लिए एंड आज हम बताएंगे एक तरीका जिससे आप अपने आउटफिट को अलग अलग तरीके से

0: है कि हमारे वार्डरोब को हम कपड़ों से भर दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप एक ही कपड़े के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं विद डिफरेंट आउटफिट्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक बहुत सिंपल सी कुर्ती है जो बहुत ही खूबसूरत है, और आजकल तो चिकनकारी का ही ट्रेंड चल रहा है, तो अगर आपके पास ऐसी वाली कुर्ती है तो आप इसको एक कैजुअल लुक में भी डाल सकते हैं. यानी कि जो ऊपर वाली कुर्ती है आपको, आप इसको जीन्स के साथ भी डाल सकते हैं, और बाद में अगर कोई प्रेयर में जाना है तो आप इस कुर्ती को प्लाजो के साथ भी डाल सकते हैं विद अ वेरी कलरफुल दुपट्टा या फिर एक प्लेन दुपट्टे के साथ. और आप इसको पेयर अप कर सकते हैं सिंपल लेगिंग्स के साथ, वाइड लेगिंग्स के साथ या फिर ब्लैक लेगिंग के साथ. इट लुक्स वेरी सिंपल एंड कम्फर्टेबल. और चौथा तरीका है, इट्स वेरी वेरी आजकल बहुत ही ट्रेंड चल रहा है कुर्ती, आप इसको पेयर अप कर सकते हैं वाइड लेग जीन्स के साथ. वाइड लेग जीन्स आजकल बहुत ही ट्रेंड पे चल रहा है, तो आप अगर ट्रेंडी, स्टाइलिश और एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत इंडो वेस्टर्न का टच लेकर आना चाहते हैं अपने आउटफिट में, तो आप वाइड लेग जीन्स के साथ भी अपनी कुर्ती को ट्राई कर सकते हैं. सो डेफिनेटली डू ट्राई दिस नेक्स्ट टाइम, और आप हमें बताएं कि आपका जो प्रॉब्लम है आउटफिट, हमेशा नई नई आउटफिट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, आप जरूर बताइए कि अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं.
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हरकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.
2: म्यूजिक टक टक आता है. RM2 रेडियो मस्ती.

0: म्यूजिक टक टका टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: फ्रेंड्स, शाम के 5:55 हो चुके हैं और चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों की ओर हम बढ़ेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पर कुछ और आपके मैसेजेस हम तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आपने हमें मैसेज भेजा है, हाय डियर, कैन यू प्लीज़ प्ले द ट्रैक टाइटल ट्रैक फ्रॉम मूवी कहो ना प्यार है फॉर अ स्पेशल फ्रेंड नीतू ऑफ पालमा काचोबोन फॉर हर फैमिली विशिंग हर सेफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस फ्रॉम राजीव ऑफ सैंपियर। हे राजीव, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। हाई रेडियो मस्ती टीम, अनुषा भेपतो कानूनी से डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना फॉर ऑल इतवारिया एंड भगवान फैमिली, स्पेशली हस्बैंड नीतीश के लिए। सो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर, एंड ये जो अगला गाना है हमें लेकर जाएगा 6 बजे के समाचार बुलेटिन की ओर।
0: Music, Dr. Gatta.
1: RM2, Radio Musti.

0: नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस
1: बुलेटिन में। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कैदियों का एक वायरल वीडियो हुआ है जिसमें वे सिगरेट जैसी वस्तुएं बनाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो कथित तौर पर बोबासा जेल के भीतर मोबाइल फोन से निकाला गया, जबकि जेल में फोन और सिगरेट दोनों प्रतिबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अनिश्चितताओं के बीच व्यापार मंत्रालय ने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के प्रभाव की समीक्षा की। कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है, जबकि उपभोक्ताओं की खरीद शक्ति बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। मॉरिशस में स्तन कैंसर के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए फ्लक में चट्ठे ब्रेस्ट कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन। शेख अलजीन तुसैन के नाम पर इस केंद्र में रोगियों को जांच, मार्गदर्शन और सहायता मिलेगी। विदेश में कनाडा और अमेरिका के मिनेसोटा जंगलों की आग का धुआं पूर्व और दक्षिण की ओर फैला, इससे शिकागो, मिडवेस्ट, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क प्रभावित। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। कुछ कैदियों को फिल्माया गया जब वे सिगरेट जैसी दिखने वाला कुछ बना रहे थे। एक मोबाइल फोन के जरिए बोबासा की जेल के दीवारों के पीछे ये दृश्य कैद किए गए। ऐसी वीडियो जो जल्द ही वायरल हो गई, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। सिगरेट का छोड़िए, मोबाइल फोन ही कैसे अंदर गया, जबकि इनकी अनुमति ही नहीं है। जानिए इस रिपोर्ट में।
2: सोशल नेटवर्क पर ये दृश्य वायरल हो गए हैं। बोबासा कैदखाने के कई कैदियों को सिगरेट घुमाते देखा गया, तैयार करते देखा गया। इनमें से

0: एक था रोडोल्फ जॉन जाक उर्फ गोडेरेक, जिसे मादक द्रव्य तस्करी के लिए 30 साल जेल की सजा हुई है। इसके सामने था प्रवेश कानू उर्फ पाचे, जिसे पहली बार के लिए 2023 में गिरफ्तार किया गया था, फिर दूसरी बार 2026 के फरवरी महीने में मादक द्रव्य के मामले को लेकर ही। प्राप्त जानकारियों के मुताबिक वीडियो को पिछले 12 अप्रैल 2026 को फिल्माया गया था इसी तरह की एक सैमसंग A16 की मदद से। शुक्रवार को फोन बरामद हुआ। प्रिजन कमिश्नर राशिद अली बिकन ने कहा, शुक्रवार को ही फोन जब्त कर लिया गया, किसी ने इसे एक कूड़ेदान में फेंक दिया था। इस मोबाइल की जांच की गई, क्लिप दिखा। जहां तक दृश्य में पदार्थ पाए जाने का सवाल है, तो तंबाकू और एंटीबायोटिक्स का मिश्रण है, जिन्हें छोटे छोटे पेपर में मोड़ कर रखा गया था। कैदखाने अधिकारियों के अनुसार इस वीडियो का प्रसारण कैदियों के बीच इस तस्करी पर नियंत्रण के प्रभाव से संबंधित है।
1: La personne ou bien les personnes qui sont derrière ce clip-là, je peux na, comment dire, le champ libre.
0: इस क्लिप में जो लोग हैं वो शायद दिखाना चाहते हैं कि वे मनमर्जी कर सकते हैं, आंगन में कैदखाने में जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, यही दिखाना चाहते हैं। सिगरेट का व्यापार होता है, जानते हैं, एक सिगरेट का दाम 1,000 रुपये में बेच रहे हैं। एक सवाल बना हुआ है, किस तरह ऐसी स्थिति पेश आई बिना किसी तत्काल हस्तक्षेप की। सभी कैदखानों में CCTV कैमरा है, 24 घंटे 7 दिन कुल 1,500 कैमरे हैं। इस क्लिप में देखेंगे तो पाएंगे कि वे अलग स्थान में गए जहां CCTV कैमरा नहीं है, टॉयलेट के पास। तलाशी और कंट्रोल के बावजूद तंबाकू का गैरकानूनी व्यापार जारी है कैदखानों में, जिनमें बुबासे भी शामिल है। इससे एक सप्ताह पहले ही एक गार्ड के साथ पूछताछ की गई थी। जब पुलिस कर्मी का मोबाइल देखा गया तो पाया गया कि जूस के जरिए उसे 40,000 रुपये मिले हैं एक ही के लिए, और कई बार ऐसा हुआ है कई सिगरेट्स के लिए। बुबासन जेल में अभी कोई 953 कैदी हैं, 40 से अधिक कैदखाने एजेंट अलग अलग सेवाओं में संलग्न, अर्थात 25 कैदियों के लिए एक गार्ड। बहुत जल्द भर्ती किए गए 58 कर्मचारी सभी कैदखानों में कार्यरत होंगे ताकि कैदियों पर ज्यादा नियंत्रण हो।
2: मध्य पूर्व में जारी भू राजनीतिक तनाव के बावजूद पेट्रोलियम निर्यातक देश में संगठन ओपेप ने वैश्विक तेल बाजार की संभावनाओं को लेकर अधिक सतर्क रुख अपनाया है। संगठन ने लगातार तीसरे महीने 2026 के लिए वैश्विक तेल मांग वृद्धि के अपने अनुमान को घटा दिया है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन ने एक बार फिर से 2026 के लिए पेट्रोल की वैश्विक मांग की वृद्धि को कम ही आंका है। अपनी हालिया मासिक रिपोर्ट में ओपेक ने दैनिक तौर पर 7,80,000 पीपे की वृद्धि का अनुमान लगाया, जबकि इससे पहले 9,70,000 का अनुमान था। लगातार तीसरी बार कमी नोट की जा रही है। कारण यही मध्य पूर्व में निरंतर तनाव के परिणाम, खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जल मार्ग के आसपास और साथ में दुनिया के कई देशों में भी आर्थिक वृद्धि में धीमापन नोट किया जा रहा है। इसके अलावा ओपेक ने वैश्विक मांग के दो प्रमुख इंजन यानी चीन और भारत की उपभोक्ता के लिए भी कमी का पूर्वानुमान किया है। इस परिप्रेक्ष्य के बावजूद संगठन ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने साल के पहले 3 महीनों के लिए मजबूती का सबूत दिया है, और कि अगर जियोपॉलिटिकल तनाव कम होता है और ऊर्जा मंडियां स्थिर होती है तो सुधार की संभावना है। पेट्रोल की वैश्विक मांग में बढ़ोतरी के पूर्वानुमान को लेकर 2027 के लिए अधिक आशावादी है। मंडियों में नजदीकी से इस पर नजर है, क्योंकि कई देशों के तेल के दाम और बाद में ईंधन के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं।
2: संयुक्त राष्ट्र में मॉरिशस ने वैश्विक आवास संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। मंत्री शकील मोहम्मद ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया, जहां न्यू अर्बन एजेंडा के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का आंकलन किया गया। शकील मोहम्मद ने आवास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: अपने संबोधन में मॉरिशस ने कहा है कि क्वीटो में न्यू अर्बन एजेंडा को अपनाए जाने के 10 वर्ष बाद भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट के अनुसार आज दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग झुग्गी बस्तियों या अनौपचारिक बस्तियों में रहने को मजबूर हैं, जबकि लगभग 3 बिलियन लोगों के पास अब भी पर्याप्त और सुरक्षित आवास उपलब्ध नहीं है। मॉरिशस ने यह भी दोहराया है कि सम्मानजनक आवास का अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिनमें संघर्ष और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित आबादी भी शामिल है। छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के लिए न्यू अर्बन एजेंडा केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं बल्कि अस्तित्व से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकल्प है।
4: मॉरिशस
3: अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराता है, साथ ही विस्थापित प्रत्येक परिवार के उस अधिकार का भी समर्थन करता है जिसके तहत वे अपने घर लौट सकें, अपना आशियाना फिर से बसा सकें और सम्मान के साथ जीवन जी सकें। इसी सोच के साथ मॉरिशस ने इंतजार नहीं किया, हमने अपनी राष्ट्रीय विकास रणनीति को लागू किया जो एक बाध्यकारी क्षेत्रीय दृष्टि पर आधारित है। ये हमारी तटीय सीमाओं की रक्षा करती है और आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच झूठे विकल्प को स्वीकार नहीं करती। हमने आवास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है क्योंकि जिस परिवार के सिर पर छत नहीं होती उसका सम्मान भी छीन जाता है और जिस राष्ट्र का सम्मान नहीं बचता उसका भविष्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता। एक छोटे द्वीपीय राष्ट्र के लिए लचीलापन केवल किसी नीतिगत दस्तावेज का एक अध्याय नहीं है बल्कि वही तय करता है कि कोई गांव जीवित रहेगा या हमेशा के लिए मिट जाएगा। पोर्टवी से पेरिस तक, नैरोबी से न्यूयॉर्क तक, संघर्ष से तबाह शहरों से लेकर समुद्र के बढ़ते जलस्तर से खतरे में पड़े तटीय इलाकों तक लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, मैं कहां रह सकता हूं और अपना जीवन फिर से कहां बसा सकता हूं? हम सब की ओर से उन्हें केवल एक ही जवाब मिलना चाहिए, एक सुरक्षित घर। मॉरिशस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से 3 प्रमुख अपीलें की हैं। पहली, स्पष्ट समय सीमा के साथ ठोस और प्रभावी प्रतिबद्धताएं अपनाई जाएं। दूसरी, छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के लिए जलवायु और शहरी विकास से जुड़े वित्तीय संसाधनों तक आसान पहुंच सुनिश्चित की जाए। और तीसरी, ये स्वीकार किया जाए कि आवास का संकट अब केवल कुछ देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने खड़ी एक साझा चुनौती बन चुका है।
2: मॉरिशस में कई लोग भोजपुरी भाषा बोलते और समझते हैं। नई पीढ़ी हमारे पूर्वजों द्वारा लाई गई इस भाषा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज भोजपुरी भाषा में आयोजित कविता पठन प्रतियोगिता और कहानी सुनाने की प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में इस अवसर पर एक विशेष समारोह लगा।
3: ये बच्चे भोजपुरी भाषा के राजदूत हैं। अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से इन्होंने ये साबित किया है कि मॉरिशस में इस भाषा का महत्व आज भी बरकरार है। उनके लिए भोजपुरी में कविता पाठ करना केवल एक स्कूली गतिविधि नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से सीधा जुड़ाव है। भोजपुरी को भाषा की तरह बोलना चाहिए ताकि हम इसे बोल सकेंगे। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी जहां मुझे समझ आया कि हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, मातृभाषा बोलना चाहिए। भोजपुरी मेरे लिए जरूरी है क्योंकि हमारे पूर्वज ये भाषा बोलते थे और अब हम लोग बोल रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं अन्य भाषाओं के साथ साथ भोजपुरी भी बोल सकती हूँ जहाँ अन्यों की तुलना में बच्चे नहीं बोल पाते। मैं हिंदी और भोजपुरी दोनों में बात और कार्य कर सकती हूँ। ऐसे समय में जब भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होता जा रहा है ये प्रतियोगिता और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। बच्चों के लिए आयोजित इस पहले संस्करण में कई वयस्कों ने भी इसमें भाग लेने की इच्छा जताई है जो इस पहल के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है।
5: कोनो भाषा के जब लेख उकरा प्राचिक में दल बकर में बोल चाल नहीं हुई तो कले कले वो भाषा समाप्त हो ले चल जाला। तो वो भाषा के बचाए खातिन भोजपुरी के मॉरिशस में बोले के प्रोत्साहित करे खातिन हमनी हर प्रतियोगितावा के आयोजन कर ले रही जा। एक में दूगो श्रेणी रहल, एगो कविता पाठन और ये एगो खिस्सा कहानी सुनाए के। तो हमनी एक में हयो चाहली सा कि भोजपुरी बड़ा आदमी लोग तो बोलबे करेला लेकिन एकड़ में लैका लोग भोजपुरी बतियाए वही खातिन है ये प्रतियोगिता। हमने खास करके बैठका के लैका लोग खातिन रखले रह लीजा और ये बहुत खुशी की बात बा कि 5 बरिस से लेके 10-15 बरिस ले एकड़ में नौजवान लोग बड़ा आदमी लोग भी 26-27 बरिस के लोग भी एकर में भाग ले लन सा।
3: इस प्रतियोगिता के माध्यम से मॉरिशस की सांस्कृतिक विरासत का एक

0: महत्वपूर्ण हिस्सा नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे भोजपुरी भाषा के संरक्षण और उसके महत्व को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है।
1: और कल फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले रविवार की सुबह 1 बजे तीसरे स्थान के लिए मैच होगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। मायामी के स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। इसके बाद कल रात 11 बजे वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, फाइनल होगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच। इसका प्रसारण एमबीसी 11 और एमबीसी प्ले पर किया जाएगा। और विदेश की खबरों में, कनाडा और अमेरिका के मिनेसोटा जंगलों की आग का धुआं पूर्व और दक्षिण की ओर फैल रहा है। इससे शिकागो, मिडवेस्ट, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क तक हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ऐसी जगहों पर जहां पर वर्ल्ड कप के सबसे बड़े स्टेडियम पाए जाते हैं।

0: अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
1: कनाडा और अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के जंगलों में लगी आग का धुआं पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, जिससे शिकागो और मिडवेस्ट से लेकर फिलाडेल्फिया और पूर्व में न्यूयॉर्क शहर तक खतरनाक स्थितियां पैदा हो।
2: देश के उत्तर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। आज रात को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। कल सुबह के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी। बाद में देश के पश्चिम में रह रहकर बरसात हो सकती है। दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर भी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। हवा उत्तर की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम साहली इलाकों पर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:47 पर, सूर्योदय कल सवेरे 7:45 बजे।

देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग तकनीकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। मुसलमान डेलिस विलनुआ मेबर्ग में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के जनाब अब्दुल मुनाफ स्कायली शेख अली जनाब अब्दुल मुनाफ शेख अली जो बाई मुनाफ के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा कल दिन के 11:30 उनके मकान मोसल मोंडेलिस विलनुआ मेबर्ग से उठाकर सबसे पहले नमाज़ जनाजे के लिए विलनुआ की रहमान मस्जिद और फिर दफनाने के लिए पॉइंट भोक्यूस खिविया दिखे और का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमारो एट 11:30 AM काशीनाथ रोड पर स्टूड फ्लैक में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड के श्री किशन बलरूप जो किशन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 उनकी पत्नी बलरूप किरण काजल के मकान काशीनाथ रोड पोस्ट फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 12:30 PM। रेलवे रोड का चिमलितिया में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री विक्रम सिंह रामदिकुल जो रोशन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:00 उनके मकान रेलवे रोड का चिमलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेदिन कौंदमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: म्यूजिक टकटका टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: वेल चलिए हमारा और आपका साथ 6:30 तक है एंड चलिए फटाफट आपके साथ एक गेम कर लेते हैं. वंस अगेन यू आर हैविंग अ चांस टू विन वन टिकट टू द गोल्डन 90s era फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट इन मॉरिशस ऑन सैटरडे 25 जुलाई 2026 एज फ्रॉम 7:30 PM एट SBICC पाई. तो अभी के लिए आपके साथ हम एक बॉलीवुड इक्वेशन करेंगे. आपको ये इक्वेशन और ये पजल सॉल्व करना है और हमें बताना है कि हम कौन सी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं. अगर हम आपसे कहे अभिजीत भट्टाचार्य प्लस शाहरुख खान प्लस सुष्मिता सेन इज इक्वल टू कौन सी मूवी के बारे में बात कर रही है. यस इट्स वेरी वेरी इजी. अगर एक क्यू और आपको दे देते हैं. अगर हम आपसे कहे अभिजीत भट्टाचार्य प्लस श्रेया घोषाल प्लस शाहरुख खान प्लस सुष्मिता सेन इज इक्वल टू कौन सी मूवी के बारे में हम बात कर रहे हैं. यू हैव टू गिव मी द राइट आंसर ऑन 5499-1294 पूरे नाम और पते के साथ. ऑल द बेस्ट.
0: Music, Tak Tak Tak.
1: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: ऑलराइट, कुछ ही देर पहले हमने आपसे एक इक्वेशन किया था। अगर हम आपसे कहे अभिजीत भट्टाचार्य प्लस श्रेया घोषाल प्लस शाहरुख खान प्लस सुष्मिता सेन इज इक्वल टू कौन सी मूवी, एंड द राइट आंसर इज मैं हूं ना। यस यस, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन हमारे साथ खेलने के लिए। एंड आपको तो पता है ही कि गेम का रूल है कि बस एक ही लकी विनर को चुना जाता है। एंड यहाँ पर लकी ड्रॉ करने के बाद हमारा लकी विनर है सृष्टि बंधन ऑफ लव ऑन चुया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड आपको ऑफ कोर्स मिल रहा है 1 entry टिकट, एंड यू आर डेफिनेटली स्टैंडिंग अ चांस टू गो एंड असिस्ट द लाइव कॉन्सर्ट गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन सैटरडे 25 जुलाई 2026 एज फ्रॉम 7:30 PM एट SBICC पाई। आपको मौका मिल रहा है टू स्टेप इन टू द वर्ल्ड ऑफ नोस्टैल्जिया और रिलीविंग द अनफॉरगेटेबल वॉइस दैट डिफाइंड बॉलीवुड्स गोल्डन एरा। तो बस आप एंजॉय कीजिएगा दिस इवनिंग ऑफ टाइमलेस मेलेडीज, लेजेंडरी हिट्स एंड प्योर म्यूजिकल मैजिक। टिकट्स स्टार्ट at 850 rupees and yeah, available hai at mochiket.mu and Rezo Utayu, and don't miss this unforgettable concert experience. Reservation ke liye aap hotline ko bhi phone kar sakte hain, which is 466-9999 466-9999. And Shrishti, aapko hum bata dete hain ki aapko weekdays ke dauran MBC aana padega apne is gift voucher ko collect karne ke liye with your ID card. आपके पास टाइम है सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच आप आकर अपना गिफ्ट वाउचर कलेक्ट कर सकते हैं। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड चलिए इसी के साथ इट्स अ टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हमारी और आपकी मुलाकात होगी मंडे को, यस, इन योर इवनिंग लाउंज शाम के 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे के बीच। तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत। संजय ऑल सेट हैं आपका साथ देने के लिए इन म्यूजिक टकटकाटक एंड ऑफ कोर्स झनकार बीट्स। सो टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।
0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती सबको। यस द काउंटडाउन इज ऑलरेडी ऑन एंड ला ग्रैंड फेट जो फुटबॉल जैसे कहते हैं वो और कुछ घंटों में समाप्त हो जाएगा, बट इट इज नॉट देयर येट। जो हम कह सकते हैं इट्स बीन अ ग्रैंड वर्ल्ड कप, फाइनल वर्ल्ड कप, और बहुत से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिले, खासकर इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस, जितने लोग इन सभी मैचेस को देखने आए थे। एंड व्हाट एम्बियंस देयर वाज इन द डॉली गार्डन जैसे कहते हैं, इट वाज वंडरफुल। टेक्निकली आल्सो बहुत सी न्यू थिंग्स, नवोते देखने को मिले बिफोर द मैचेस, ड्यूरिंग द मैचेस। When we think about the hydration breaks, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन I think we all came to see that it was good enough. It was worth to give a hydration break after 23-25 minutes of play. लेकिन that was compensated afterward by additional time. जहाँ तक fair play का सवाल है, we had very nice football, we had many goals. कुछ लोगों की फेवरेट टीमें जल्दी निकल गई, कुछ लोग were not expecting to have a final between Argentina and Spain, and everyone was expecting, hoping for a final between France and England. Final तो हुआ लेकिन वो महाफाइनल नहीं, ला पचित फिनाल जैसे कहते हैं। सो फील फ्री टू शेयर योर मैसेजेस, योर फीलिंग्स, आपको कौन सा मैच अच्छा लगा, कौन सी टीम अच्छी लगी या कौन से खिलाड़ी अच्छे लगे,

0: welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness, anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: 7 p.m.
4: RM2,
0: Radio Musty.
4: Feel the Musty.
6: Yo, hello. Testing.
7: Testing 1, 2.
6: Yeah.
7: कभी सोचा है
8: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
7: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
8: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
7: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
8: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
7: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
8: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
7: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
8: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
7: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
8: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
7: और आपका चांस।
8: डोंट मिस इट।
0: झलकार बीट्स
4: RM2 Radio Musti.
0: Jhankar Beats.
9: In it, Sri Charso Bisa.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Chunga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: Yes, dear listeners, welcome in Jhankar Beats. हमारा आपका साथ रहेगा रात के 9 बजे तक. And it's already heating up in anticipation of the final of the World Cup 2026 जो कल रात खेला जाएगा between Argentina and Spain. क्या Spain Argentina के लिए एक pain साबित होगा या Messi अपनी इस इंटरनेशनल करियर को और भी शानदार बनाएंगे एक और ट्रॉफी जीत कर. सो इस महामुकाबला को यादगार बनाने के लिए कल रात हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार प्रोग्राम. एज फ्रॉम 10 अप टिल 1 यानी कि तीन घंटों की मस्ती में सब लॉम्बियंस होगा ऑफ द मैच. गोल्स जब गोल बनेंगे तो आप सबों को सूचित करेंगे बताएंगे एंड वी विल मेक यू लीव दैट दैट एम्बियंस ऑफ इन न्यू जर्सी. और साथ साथ में वी विल हैव लॉट्स ऑफ गेम्स जोकों को और बहुत सारे इनाम आपको जीतने को मिलेंगे. अभी जीत लाइव कंसर्ट जोकों को द ग्रैंड बाजार ऑफ इंडिया जोकों को राजस्थान हैंड

रूम हाउस जेंट्स इंडिया का अनेक अनेक प्राइजेस आपको जीतने को मिलेंगे बस आपको हमारा साथ निभाना होगा आज फ्रॉम 10 अप टिल 1 पीएम और अगर एक्स्ट्रा टाइम रहा तो उसके बाद भी याद रहे ये यादगार प्रोग्राम चलने वाला है टुमारो नाइट आज फ्रॉम 10 अप टिल द मैच फिनिशेस

0: जमकर बीट्स
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: दिन देर रात अवश्य बजेगा कल रात लेकिन मस्ती तो आलम अभी से हीटअप होने लगी है और आप भी अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं 1549924 जैसे किया हमारे दोस्त ऋषि ने ऋषि विदेशी जो लिखते हैं वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु आर ऑन वेकेशन एंड कैन एंजॉय लियोनेल मेसी वो लिखते हैं लियोनेल मेसी इज द लायन हु इज गोइंग टू रोर अगेन इन दैट अरेना अगेंस्ट फॉर्मर कोलीग्स हाँ फॉर्मर कोलीग्स क्योंकि बहुत से लोगों का ध्यान देयर इज सो मच ऑफ इंटरप्रिटेशन देयर इज सो मच ऑफ एनालिसिस जो चल रही है और एक एनालिसिस वो ये है कि अधिकतर जिस क्लब के खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं वो क्लब है रियल मैड्रिड यस रियल मैड्रिड के खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 19 गोल्स बनाए हैं इन द कोर्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप सो फार अगर आप भी अपनी ओर से कोई इंटरप्रिटेशन हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो दिस इज द वे 5499 1294 शंकर बीट संजय

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Chunga Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: So on this final weekend of the World Cup 2026, time to do a recap of the whole event and to have a look at the stats. अगर टीम स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ गोल्स जिस टीम ने सबसे ज्यादा गोल्स स्कोर किए हैं इन दीज फाइनल्स

of the World Cup 2026 पहले स्थान पर आता है अर्जेंटीना ऑब्वियसली अर्जेंटीना जिसने 19 गोल्स बनाए जिनमें से 8 बाय लियोनेल मेसी और लियोनेल मेसी के असिस्ट भी काफी हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट्स 4 दूसरे स्थान पर आता है फ्रांस 16 गोल्स स्कोर्ड तीसरे स्थान पर इंग्लैंड 14 गोल्स स्कोर्ड एक्सेको इज बेल्जियम 14 गोल्स स्कोर्ड और पांचवें स्थान पर आता है स्पेन 13 गोल्स स्कोर्ड लेकिन स्पेन ने अभी तक सिर्फ एक गोल खाया है दैट मेक्स इट द बेस्ट डिफेंस ऑफ द होल टूर्नामेंट

कपिल संजय के साथ यहाँ पर लेते हैं मैसेज हमारे दोस्त कविश का फ्रॉम बिले लिखते हैं जय सियाराम भाई संजय जय सियाराम आपको भी उनके उसे नेक्स्ट आई एम गोइंग फॉर वाइफ रेशमी वी आर हैविंग अ लॉन्ग ड्राइव टू अ हल्दी वाह जी वाह क्या प्रोग्राम है और भाई कविश लिखते हैं सपोर्टिंग स्पेन फॉर द फाइनल ओके स्पेन में कोई खास खिलाड़ी हैं जिसे आप बहुत ही पसंद करते हैं लेट मी नो भाई कविश डू लेट मी नो लेकिन थैंक यू फॉर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू सेंड अस अ मैसेज थैंक यू भाई कविश सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैट्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप हमने गोल्स के बारे में कहा नाउ अटेम्प्ट्स एट गोल बहुत से खिलाड़ी अटेम्प्ट्स करते हैं बट दोज डू नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू गोल्स सो जिस टीम ने सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स एट गोल की वो टीम है फ्रांस अप टिल नाउ 120 अटेम्प्ट्स एट गोल अब दिस कैन गो अप टुमरो एज वेल So France 120 attempts at goal. दूसरे स्थान पर आता है स्पेन equally 120 attempts. और तीसरे स्थान पर आता है अर्जेंटीना 113. अब आप सोचेंगे हाँ इसके बाद चौथे स्थान पर बेल्जियम 112 attempts और पांचवें स्थान पर इंग्लैंड 99 attempts. So Argentina in third place with 113 attempts, jabki France pehle sthan par 120. Lekin in terms of goal, Argentina is first, 19 goals. This already gives you an indication ki how much the Argentinian attackers have been more precise, have been more efficacious, have been more effective. Yani ki attempt ke saath saath their goal scoring ability has been better than that of the French.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Chunka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: जी आज के झंगार बीट्स प्रोग्राम के जरिए वी आर हैविंग अ लुक एन असेसमेंट ऑफ द होल टूर्नामेंट. अभी तक कितने गोल्स बने, किस टीम ने जरा गोल स्कोर किए, विच टीम हैज बीन मोर एफिकस इन फ्रंट ऑफ द एडवर्स गोल. और इन सब में हमने देखा किस तरह से अर्जेंटीना हैज बीन कंसिस्टेंट इक्वली एज स्पेन हैज बीन. हालांकि शुरुआत से वी वर मोर इलोजियस टुवर्ड्स फ्रांस, लेकिन हमने देखा किस तरह से फ्रांस ने हालांकि जरा अटेम्प्ट्स आप गोल की 130 मोर देन अर्जेंटीना, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एफिकेसिटी, इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस अर्जेंटीना हैज बीन बेटर देन फ्रांस. इसीलिए अर्जेंटीना इज इन द फाइनल एंड फ्रांस इज नॉट. चलिए हमारे इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द क्लीन शीट्स, यानी कि कितने टीमों ने, कौन कौन सी टीमों ने ज्यादा मैचेस खेले विदाउट कंसीडिंग गोल्स. एंड आई सपोज एवरीवन शुड बी नोइंग दैट इट इज स्पेन. स्पेन ने 6 क्लीन शीट्स प्राप्त किए हैं, यानी कि 6 ऐसे मैचेस स्पेन ने खेले हैं जिनमें उन्होंने गोल्स कंसीड नहीं किया, सिर्फ एक गोल कंसीड किया, सिर्फ एक ही गोल सो फार. बाकी 6 मैचेस में दे हैव नॉट कंसीडेड गोल्स. दूसरे स्थान पर आता है फ्रांस, 4 क्लीन शीट्स, 4 मैचेस जिनमें उन्होंने गोल्स कंसीड नहीं किए. फिर चौथे स्थान पर कोलंबिया, 4 क्लीन शीट्स. फिर मेक्सिको, 4 क्लीन शीट्स. और फिर अर्जेंटीना, यानी कि देखा जाए अर्जेंटीना मे बी हैविंग a very good attack with 19 goals scored, but in terms of defense Argentina is not the best, definitely.

0: Sky Beats.
1: RM2 Radio Musti.
0: Chankar Beats.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Chunka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: डियर लिसनर्स, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं बाय सेंडिंग मैसेजेस। अगर आपके हिसाब से वेल, सभी लोग बात करें अबाउट मेसी, सभी लोग बात करें अबाउट एम्बापे, हैरी केन, अबाउट एनी अदर प्लेयर, अगर आपके हिसाब से कोई एक प्लेयर है, कोई एक कीपर है, कोई एक मिडफील्डर है, या किसी ने भी आपको स्ट्राइक किया है, just like everyone was talking about Vozina, the Josimar José Evora Dias, yani ke the Cap Verde keeper jo pehle round mein everyone was talking about him. So aise hi agar aap kisi ke bare mein baat karna chahte hain was really impressed you in so far, aap hame message kar sakte hain on 5499 1294.

0: welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: 8 PM.
4: RM2
0: Radio Musty.
4: Feel the Musty.
6: Yo, testing 1 2. Yeah.
7: कभी सोचा है
6: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
7: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
6: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
7: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
6: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
7: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
6: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
7: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
6: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
7: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
6: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
7: और आपका चांस।
6: डोंट मिस इट।
4: Jhankar Beats RM2 Radio Musti
0: Jhankar Beats.
8: Let's go, you already know.
9: Meri aashiqui chahu main.

0: झंकार बीट्स RM2 रेडियो मस्ती
1: आठ बजकर छह मिनट वेलकम इन द सेकंड आवर झंकार बीट्स संजय के साथ टुडे वी आर हैविंग अ लुक एट द कंपटीशन एज अ होल. हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग इट हैव द टेंडेंसी ऑफ टू वॉच द मैचेस एंड देन टू कमेंट ऑन देम अपने दोस्तों के संग अपने कोलीग्स के संग. लेकिन ऐसा भी अगर आपको मौका मिले टू गो एंड रीड गो एंड लिसन टू द बायोग्राफीज ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स और तब आपको पता चलेगा किस संघर्ष पर से गुजर कर पीपल लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो लियोनेल मेसी हैव गोन थ्रू टू रीच दैट लेवल. अगर आप पूछेंगे हु इज अ रियल इंस्पिरेशन बिहाइंड लियोनेल मेसी जिन्होंने उन्हें इंस्पायर किया टू बिकम ए फुटबॉलर देन यू विल सर्टेनली कम अक्रॉस द ग्रैंड मदर दादी ऑफ लियोनेल मेसी जिन्होंने सब कुछ किया फॉर लियोनेल मेसी टू बिकम ए फुटबॉलर. आजकल के ज़माने में यू वोंट सी इट पर्टिकुलर इन मॉरिशियस कि एक दादी अपने पोते को प्रोत्साहित करे कि वो जाकर फुटबॉलर बने और दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर बने. डिड यू नो दैट. लेकिन ये हुआ कि 10 साल की उम्र में जब मेसी 10 साल का हुआ तो उसकी दादी गुजर गई. देन इट वॉज द फादर उनके पिताजी ने उन्हें संभाला और फिर से फुटबॉल में रुचि रखने के लिए प्रोत्साहित किया. बाद में उन्हें एक बीमारी हुई विच एक ऐसी बीमारी जिसके कारण वो ज़्यादा और बड़े न पाए यानी कि ही कुडन ग्रो टॉल. इसलिए आप देखेंगे कि मेसी इज कंपैरेटिवली नॉट दैट टॉल लेकिन उन्होंने इसको एक हैंडीकैप नहीं माना. ऑन द कंट्री जस्ट लाइक माराडोना जो उतने ऊँचे

0: चले हम आपके मैसेजेस का इंतज़ार करते हैं ऑन 5499-1294, जैसे कि पहले से हम आपको बताते आ रहे हैं टुमारो इट्स गोइंग टू बी टेमिने ऑन अपोथियोज द वर्ल्ड कप 2026 विद अ फैंटास्टिक प्रोग्राम आज फ्रॉम 10 PM अप टिल द फिनिश ऑफ द मैच मेनी गेम्स को जिसके जरिए आप जीत पाएंगे अभिजीत लाइव कॉन्सर्ट के टिकट्स प्राइजेस फ्रॉम द ग्रैंड बाजार ऑफ इंडिया फ्रॉम राजस्थान हैंडलूम हाउस लिटिल जेन इंडिया और एमबीसी की ओर से अनेक पुरस्कार आप लोगों को मिल पाएगा यू जस्ट नीड टू लिसन टू रेडियो मस्ती आज फ्रॉम 10 PM और हम आपको फुटबॉल के बारे में ऑल द अपडेट्स देते रहेंगे विद द एम्बियंस फ्रॉम आवर लाइव शोज अक्रॉस द आइलैंड जहां पर अनेक हमारे ऑडियंस उपस्थित होंगे आई विल बी इन द स्टूडियो टू कोऑर्डिनेट इट ऑल एंड गिव यू द फील ऑफ द मैच ऑफ द फाइनल इटसेल्फ एंड ऑल्सो हाउ पीपल आर लिविंग द फाइनल इन मॉरिशियस
1: Jhankar Beats
2: RM2 Radio Musti
1: Jhankar Beats

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Junga Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: यस डियर लिसनर्स, हमारे एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि व्हेन वी डिस्कस अबाउट फुटबॉल, वी डिस्कस अबाउट गोल्स या तो अबाउट सेव्स, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि बीच में और खिलाड़ी होते हैं जिनके कारण ये फुटबॉल इतना आकर्षक बनता है. और इनमें से आते हैं जो जो मिड प्लेयर्स होते हैं, जो डिफेंस में खेलते हैं, और उन लोगों का योगदान हमेशा कुछ कुछ फीका नजर नहीं आता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द टोटल डिस्टेंस रन बाय द प्लेयर्स. और इस ताली में, इस

की सूची में जिस जिस प्लेयर ने अभी तक सबसे ज्यादा दौरा है इट इज रोड्री स्पेन के खिलाड़ी रोड्री जिन्होंने अभी तक 83,802 किलोमीटर्स दौड़े हैं वाओ यस इतना यानी कि जितना ज्यादा एक एक खिलाड़ी दौड़ता है इट शोज हाउ मच एंगेज्ड दैट प्लेयर इज इन द प्ले यानी कि वो ही इज नॉट शनिंग द प्ले ही इज मच एंगेज्ड इन द प्ले गेंद के पीछे दौड़ना या एक ऐसी जगह पर अपने आप को रखना जहां पर आप आपका दोस्त आपका कलीग आपको गेंद दे सकता है दिमाग के जैसे कहते हैं सो रोड्री हैज बीन अमंग द मोस्ट प्रोलिफिक रनर्स इन दिस टूर्नामेंट और दूसरे स्थान पर हैरी केन यस हैरी केन कम्स इन सेकंड प्लेस विद 78,564 किलोमीटर्स रन तीसरे स्थान पर एलियट एंडरसन अगेन फ्रॉम इंग्लैंड और चौथे स्थान पर अलेक्सिस मकालिस्टर फ्रॉम अर्जेंटीना और पांचवें स्थान पर मार्क कुकुरेला from Spain again. So, ye sab khiladi are among the best entertainers, among the best runners in the tournament so far from this World Cup.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Chunka Beats.
1: RM2 Radio
2: Musti. आज बजकर 35 मिनट यू लिसनिंग टू चंकर बीट संजय के साथ वी आर हीटिंग अप ऑन प्रीविजन ऑफ द मैच जो कल रात खेला जाएगा रात के 11 बजे से लेकर बिटवीन स्पेन एंड अर्जेंटीना. याद है कि उससे पहले कल सुबह 1 बजे वी विल हैव द मैच ऑफ फॉर द थर्ड प्लेस बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. सो वी आर हैविंग look at the stats during this full tournament. जहाँ तक scorers का सवाल है, Lionel Messi and Kylian Mbappe both are on 8 goals scored. लेकिन Lionel Messi has given 4 assists, जबकि Kylian Mbappe ने 3 assists दिए हैं. Kylian Mbappe ने कम minutes खेले हैं. Kylian Mbappe has been less on the field than Lionel Messi. लेकिन in terms of assist, Lionel Messi पहले हैं with 4 assists. So पहले स्थान पर Lionel Messi, 8 goals scored and 4 assists. आपको याद होगा कि in the match against England, Lionel Messi ने goal to score नहीं किया, लेकिन दोनों के दोनों गोल के असिस्ट वे खुद थे. He literally dribbled 4 English players in the defense and then offered the goal to his teammate. और the second goal as well, उनका एक lob, perfect lob, he placed literally placed the goal, the ball on the head of the scorer. So definitely Lionel Messi is a real genius, a real star, a real magician. Second place में Kylian Mbappe, 8 goals and 3 assists. और तीसरे स्थान पर Erling Haaland, 7 goals and 0 assists. ये भी सोचने लायक है that Erling Haaland is a scorer. लेकिन जहाँ तक फुटबॉल बनाने का सवाल है, जहाँ तक मोहताज का सवाल है, he is not as gifted as Lionel Messi.

0: Jhankar Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: Dear listeners, let's have a look at the lineup for Spain. Projected to line up in a 4-1-2-3 formation for the FIFA World Cup 2026 final against Argentina. The expected starting 11 under manager Luis de la Fuente is like following Yannicke, goalkeeper Hoga, Unai Simon, defenders Honge, Pedro Porro, jo goal bhi score karte hain, Paul Kubasi, Aymeric Laporte and Mark Cucurella. So inke kandhon par bahut hi difficult responsibility hoga to counter the best attack of the World Cup 2026, kyunki Argentina has got the best attack of this World Cup. So the best defense against the best attack. So Unai Simon, jinhone abhi tak sirf ek goal khaya hai, aur samne mein char defenders, Pedro Porro, Paul Kubasi, Aymeric Laporte, aur Marc Cucurella. Defensive mid player Rodri, जो अपने आप में एक फैक्ट्री है, दौड़ने वाली फैक्ट्री, बिकॉज ही इज द मोस्ट प्रोलिफिक रनर ऑफ द होल टूर्नामेंट. फिर सेंट्रल मिडफील्डर्स फाबियन रूइज और एलेक्स बीना, एंड द फॉरवर्ड्स लामिन यमाल, 19 साल का यमाल जो अभी तक उतना ब्लूम नहीं हो पाया है as expected, क्योंकि सामने में बहुत ही तगड़े डिफेंडर्स हमें दे मिकाइल ओजियाज़ाबाल, द बिग रिवेलेशन ऑफ दिस टूर्नामेंट, एंड डानी ओल्मो. सो दिस विल बी द स्टार्टिंग लाइनअप फॉर द मैच फॉर स्पेन टुमारो, होपफुली.

हैं आप सभी को एक बिग म्यूजिकल हग। आप जहां भी हैं आपका मूड मस्त हो, अगर नहीं है तो डोंट वरी, हमारी प्लेलिस्ट किस काम आएगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हमारे पास भी है। अगर आपका मूड खराब है तो मूड ठीक करेंगे गाने के साथ, नाचेंगे गाएंगे डांस करेंगे, करोगे ना?

वही एंजॉय करते हैं लाइफ छोटी सी है आज हम यहाँ कल पता नहीं कहाँ तो क्यों टेंशन ले ना टेंशन लेने का ना देने का मस्ती करने का डांस करने का बैठे

म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा दो प्लीज प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट प्लीज बढ़ा दो। स्ट्रेस अपने आप भाग जाएगा। ये जो मुंह लटका के बैठे हुए हो क्या सोच रहे हो भाई? जितना टाइम आप मुंह लटका के बैठे हो उतने टाइम में तो आप बहुत कुछ कर जाते। मैं हमेशा कहती हूँ खुशी जो है वो कोई चीज नहीं होती जिसे हम खरीद सकते हैं, छीन सकते हैं, चुरा सकते हैं। इट्स अ फीलिंग। गाने को सुनकर खुशी नहीं मिलती? देखो अगला गाना सुन लो, खुशी मिल जाएगी।

माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आए हैं कुछ फुट टैपिंग बॉलीवुड हिट्स जिसके साथ आप झूम रहे हैं, घूम रहे हैं। ये जो पॉजिटिव वाइब है ना, ये ऐसे नहीं आता, इसको क्रिएट करना पड़ता है। कैसे होता है? जब कोई इंसान आपको खुश करने की कोशिश करता है, तो जैसे मैं आपको खुश कर रही हूँ, आप अपने आप को तो खुश कर ही सकते हो ना। थोड़ा आईने में जाके शक्ल देख लो।

हेलो गाइस, यू आर लिस्टिंग टू लेट नाइट ब्रूज वेदिता के साथ। हम बात कर रही थी कि इंसान को हैप्पीनेस क्यों नहीं मिलती। देखो भाई, जो इंसान अपने हाथ में, आप किसी इंसान को कितना भी प्यार कर लो, अगर उसके हाथ में कांटे हैं, वो आपको कांटे देना चाहता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपको वो कांटे चाहिए कि नहीं। अब उसको खुश करके वो कांटे आपने हाथ में ले लिए तो चुभेंगे आपको, है ना। और अगर कोई ना चाहते हुए उसके हाथ में फूल है, और आपको क्या करना है, आपको फूल चुनना है ना। तो लाइफ यही अपॉर्चुनिटीज देती है आपको।

बहुत ही ऑटोमेटिक होता है हमारे साथ जब हम ऐसे हमारे दोस्तों के साथ होते हैं. रेडियो मस्ती हमारा प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनका

मूड बना रहे हैं, उनका साथ बना रहे हैं। तो चलिए, आपका मूड बनाते बनाते हमारा मूड टटकाटक हो ही जाता है। मैं तो कर रही हूँ डांस, करना है आपको तो करो। वैसे आईने में शक्ल देख के आए हो,

रात अभी बाकी है मेरे दोस्त, मस्ती भी अभी बाकी है, लेट नाइट ग्रूव है और यहाँ पर हम ऐसे नहीं आते, आपको बस सरप्राइज करने आते हैं कभी कभी। बॉलीवुड पर भी सॉन्ग्स के साथ पूरी रात को एनर्जेटिक बनाना है, तो कहीं जाएगा नहीं।

तरह ये म्यूजिकल सफर आप विनीता का साथ दे रहे हैं एंड आई जस्ट होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम. चलो गुड टाइम की बात करते हैं, तो वीकेंड में ऐसा ही होता है ना कि लोग अपनी सारी टेंशन भुलाना चाहते हैं. कैसे भुलाएं इसलिए कि आप कुछ सोचे ना, रेडियो का वॉल्यूम ऑन करो, कोई देखे ना देखे डांस करना शुरू कर दो एंड ट्रस्ट मी फील द मैजिक.

सो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो, कहाँ से साथ दे रहे हो, गाड़ी चला रहे हो? ओके, बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, ओके, स्पीड लिमिट पर ध्यान देना, नहीं तो अंकल रोक लेंगे। आपको क्या लगता है, रात को भी अंकल होते हैं रोड पे और फिर उसके बाद जेब से जो पैसे निकल जाएंगे, इसीलिए आराम से, ठीक है?

जितने भी दोस्त आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेट मी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. गलत गाया नहीं क्या? अच्छा नहीं गाया क्या? है ना कि सर्दी खांसी जुकाम ने थोड़ा सा आवाज़ चेंज कर दिया. हाँ हाँ हाँ हाँ लेकिन अभी ठीक है, कोई बात नहीं.

सकते हैं हम. सो अभी तक मूड ठीक नहीं हुआ कि हो गया ना, जानती थी हो जाएगा, तो पहले गाने के साथ ही हो गया था, ये मैंने नोटिस की थी. लेकिन आप ना थोड़ा सा नखरे करते हो, बड़े नॉटी हो, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा पैम्पर और कर लूं, तुम्हारा तो काम ही

लेट नाइट ग्रूव्स में जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो बिना वजह पार्टी कर रहे हैं, गाइस आई एम विद यू योर रॉक स्टार सुपरस्टार, क्या बताऊं मैं, कौन सा नाम दूं मैं आपको। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ही लोग चाहिए हमें लाइफ में, जो बिना रीज़न के खुश होते हैं, जो बिना वजह पार्टी करते हैं, क्योंकि ये जो लम्हे, ये जो मौके होते हैं ना, बहुत कम मिलते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपनों के साथ। कभी कभी अकेले किसी को याद करते हुए पार्टी करना, ये भी तो पार्टी होती है। आपने की कभी?

पार्टी हमारी जारी है आपके अपने रेडियो मस्ती विनीता के साथ लेट नाइट ग्रुप में। गाइस मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। आपकी खुशी नहीं दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन मैं फील कर रही हूँ। आई कैन फील इट दैट यू हैविंग अ गुड टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।

अभी अभी थी दुश्मनी, अभी है दोस्ती। अरे मेरे साथ दोस्ती दुश्मनी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नींद से कह रही हूँ। नींद से दोस्ती थी, नींद से दुश्मनी थी, कि ये नींद जो है आती क्यों नहीं। देखो इतना थक जाओगे ना अभी डांस करते करते, नींद आ जाएगी थोड़ी देर में। अभी थोड़ा सा हमारा वार्म अप भी हो गया, एक्सरसाइज हो रहा है। डांस करो, थक जाओगे, सो

रेडियो मस्ती पर भी रीता का साथ है. थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग मी. मेरे प्रोग्राम में मैं कोशिश करती हूँ गाने ऐसे हो जिससे आपका जो मूड है वो बना रहे, आप खुश रहो. खुश रहो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए. इंसान को बस खुशी चाहिए. बाकी हम कहते हैं ना कि खुशियाँ जो होती हैं वो सबके नसीब में नहीं, सबके नसीब

माय डियर फ्रेंड्स, अभी मेरे जाने का टाइम हो गया है. थैंक यू फॉर हैविंग मी. आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में, आपकी गाड़ी में, आपके यहाँ पार्टी में. अब मुलाकात करेंगे हम अगले हफ्ते, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है लेट नाइट ग्रूव्स यहाँ समाप्त होता है. आपसे मुलाकात करूंगी बहुत जल्द, बहुत सारा प्यार आपके लिए. टेक केयर, बाय बाय.

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।